अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 38।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्रीराम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्रीराम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्रीराम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 38। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

हेलो सर, मैं स्टूडियो 5 से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की

0: सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. X पर एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN 2.0 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे

0: देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। Expert@airnewshindi.com

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची।

0: by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजवित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मुआवनत के लिए इमदादी सामान के साथ दो और तैयारे वहां भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और ख्वातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। 27 घंटे की उल्टी गिनती के बाद सेटेलाइट EVOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F17 को सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से रात देर गए 2:55 पर छोड़ा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इसरो ने कहा है कि 2367 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को इसके छोड़े जाने के तकरीबन 18 मिनट बाद मुतालिका मदार में पहुंचा दिया गया। EOS-05 कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाला जदीद तर्ज का सैटेलाइट है और ये जमीन के मुतवाजी मदार में पहुंचाए जाने वाला पहला इमेजिंग सैटेलाइट भी है। ये सैटेलाइट कम वक्त में ही वसी इलाकों की तस्वीरें फराहम कर सकेगा, जिससे कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी। सैटेलाइट से हासिल होने वाले डेटा का इस्तेमाल ज़राअत, कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने में मुआवनत के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट कुदरती आफात की सूरत में बरवक्त जानकारी फराहम कर सकेगा और इस तरह मुतालिका हुकाम को एमरजेंसी सूरतेहाल से निमटने की खातिर फौरी तौर पर इकदामात करने में मदद भी मिलेगी। इधर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इस मिशन से कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी और मुतालिका खिदमात की फराहमी में बेहतरी आ सकेगी। इस मिशन से अंदरून मुल्क तैयार की गई खलाई रॉकेट की तकनीक में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की भी अक्कासी होती है। अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EVOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक गिना कदर कामयाबी और मुल्क के लिए एक फख्रिया लम्हा करार दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने GSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत भारत की खलाई सलाहियत नई बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिससे आलमी सतह पर एक खलाई ताकत के तौर पर हमारी पोजिशन मजबूत से मजबूत तर हो रही है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल इस मुश्तरका कमेटी की सरबराह होंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: कमेटी में लोकसभा से जो सरकर्दा नाम शामिल हैं उनमें भर्तृहरि महताब, तेजस्वी सूर्य, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन

0: धन श्रृंखला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी कमेटी में शामिल होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 12 अगस्त को गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीम बिल 2026 को मजीद और खोस के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजे जाने की मंजूरी दे दी थी। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक कानून 2010 में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना भी है। भानु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जा रहे हैं।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए मथुरा और वृंदावन में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश मथुरा में हजारों मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इनमें बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मथुरा और वृंदावन जय श्री कृष्ण के नारों की जाप के साथ भक्ति के माहौल से सरशार हैं। पूरे शहर में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ब्रिज मंडल और रियासत के दीगर हिस्सों में भी जन्माष्टमी पूरे जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है, लेकिन बड़ी तकरीब मथुरा वृंदावन में हो रही है, जहाँ आधी रात के जश्न के लिए सभी मंदिरों को फूलों, पत्तियों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। इस मौके पर लाखों अकीदतमंद पहले ही भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में आने वाले अकीदतमंदों को देखते हुए पूरे मथुरा शहर में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: गुजरात में भी जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण जी के बड़े मंदिरों में मजहबी तकरीबात और खुसूसी रसूम का सिलसिला जारी है। इनमें आलमी शोहरत याफ्ता द्वारिकाधीश डाकोर और श्यामला जी मंदिर शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद पवित्र शहर द्वारका में जमा हो रहे हैं ताकि जन्माष्टमी की तकरीबात में शिरकत कर सकें। आज सुबह सवेरे पवित्र मंगल आरती के साथ मजहबी रसूमात का आगाज हुआ, जो दिन भर खुसूसी दर्शन और रिवायती कीर्तन के साथ जारी रहेगी। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर को रोशनियों और फूलों से सजाया गया है और जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी तादाद में लोग यहां आ रहे हैं। मकामी इंतजामिया और मंदिर के अहलकारों की जानिब से अकीदतमंदों की भीड़ के बंदोबस्त और बिला रुकावट दर्शन को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की हयात और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफे को मानवीयत अता की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के रूहानी पैगामात से बेलोस खिदमत की तरगीब मिलती है, जिसने हमेशा इंसाफ इंसानियत को रहनुमाई फराहम की। उन्होंने दुआ की कि भगवान श्री कृष्ण की अकीदत का ये मौका हर किसी की ज़िंदगी में मुस्बत तवानाई लेकर आए और सबको कुव्वत फराहम करे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर सीपी राधा कृष्णन आज चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया SAIFCIL में जदीद इंस्ट्रूमेंटेशन मरकज का इफ्तिताह करेंगे। नायब सदर पंजाब यूनिवर्सिटी तकनीकी इख्तराई फोरम का भी आगाज करेंगे, जो यूनिवर्सिटी की तहकीक, इख्तरा और स्टार्टअप इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। इस फोरम में ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट्स के सुदूर और आला जुडिशियल रहनुमा शिरकत करेंगे। मजकूरा फोरम के जरिए इंसाफ की फराहमी, बैनुल अक्वामी तनाज़ात के तस्वीर, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मामलात पर तबादले ख्याल का मौका फराहम होगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत पहले दिन जुडिशियल वफूद के सरबराह के साथ कई दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मुत्तहदा अरब अमारात, बेलारूस, कजाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज़्बेकिस्तान के जुडिशियल

0: जुडिशियल रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के आला चुनाव अफसर के दफ्तर ने ये जानकारी दी है कि जो राय दहिंदगान 30 जून से 17 अगस्त तक की मुकर्रर मुद्दत के दौरान अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करा सके, वो दावों और एतराजात दाखिल करने की मुद्दत के दौरान अपना नाम शामिल कराने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं। ये सहूलत इस महीने की 30 तारीख तक दस्तियाब रहेगी। कमीशन ने कहा है कि राय दहिंदगान हतमी वोटर फहरिस्त में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं, जो इस साल 4 नवंबर को शाये की जाएगी। भारत ने नेपाल के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और राहत की कार्रवाइयों में मदद फराहम करने के लिए इमदादी सामान के साथ मजीद 2 तैयारे भेजे हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर दोनों C-130J तैयारे काठमांडू में उतरे हैं। इमदादी सामान नेपाल के साइंस और टेक्नोलॉजी और इख्तरा के वजीर महावीर पुन के सुपुर्द किया गया। वजारत खारजा नेपाल में अचानक आए सैलाब के पेश नजर भारत से ताल्लुक रखने वाले लापता अफराद के बराह रास्त हयातियाती रिश्तेदारों के DNA प्रोफाइलिंग की खातिर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरीज, रियासती फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरीज और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की लेबॉरेटरियों में खिदमात दस्तियाब कराएगी। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत में रिहाइश पजीर फर्स्ट डिग्री हयातियाती रिश्तेदार मखसूस मराकज पर अपने हयातियाती नमूने जमा करा सकते हैं और DNA प्रोफाइल तैयार करा सकते हैं। नेपाल में अचानक तबाह कुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि इस सानहे के एक हफ्ते से ज्यादा गुजरने के बाद 5,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक चितवन में सबसे ज्यादा तादाद में 355 लाशें बरामद की गईं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा है कि सानहे से मुंसलिक आबोहवा की तब्दीली का मामला बैन अक्वामी बिरादरी के साथ लाजमी तौर पर उठाया जाना चाहिए। खवातीन क्रिकेट में कल रात दुबई में ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में भारत हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का निशाना मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर्स और 2 गेंद में महज 56 रन पर आउट हो गई। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए खवातीन की भारतीय टीम ने मुकर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 64 गेंदों में शानदार 124 रन बनाकर कई आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने 14 चौके और 7 छक्के लगाए। मंधाना खवातीन के बैन अक्वामी क्रिकेट में मिथाली राज को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। बैडमिंटन में आज शेंजेन में भारत के बैडमिंटन के सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत चाइना मास्टर सुपर 750 टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चिक यू का सामना करेंगी। श्रीकांत ने कल आलमी नंबर 9 खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को 21-18, 21-19 से हराया था। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं अर्जुमंद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हम मनसब बाद दी वेवर से मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मुलाकात में तजारत और सरमायाकारी, बहरी उमूर और काबिल तजदीद तवानाई समेत कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। रोजनामा इनकलाब ने वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आलमी सतह पर जारी रुकावटों और मुतादित चैलेंजों के बावजूद भारत दुनिया की बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बना हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मावनत के लिए इमदादी सामान के साथ 2 और तैयारे वहां भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और ख्वातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचे।

0: गया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरगंगा। स्वरगंगा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विजय कुमार जी से बांसुरी पर राग गुजरी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विजय कुमार से बांसुरी पर राग गुजरी तोड़ी सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है शिक्षा और शिक्षकों पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा जिंदल।
1: गांधी जी मानते थे कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ साक्षर होना नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ है चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भर बनना और मानवता की सेवा करना। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा का विरोध किया और बुनियादी शिक्षा तथा नई तालीम का विचार दिया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। उनका मानना है शिक्षा व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा के बाद व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए काम करे। वे कहते थे यदि हम देश को आजाद करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी। बच्चों को अंग्रेजी नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। 7 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए और उनकी शिक्षा अनिवार्य की जाए। पढ़ाई के साथ साथ कोई हस्तशिल्प, कताई बुनाई, खेती बाड़ी भी सिखाई जाए। गांधी जी कहते थे हाथ और दिमाग साथ चले। स्कूल अपने खर्चे का कुछ हिस्सा बच्चों द्वारा बनाए गए सामान को बेचकर निकाले। गांधी जी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता मानते थे। उनके अनुसार एक आदर्श शिक्षक जैसा करेगा छात्र वैसा ही सीखेगा। आप जो उपदेश दें उसे पहले खुद जिए। शिक्षक का काम पैसा कमाना नहीं सेवा करना है। कम वेतन में भी काम करने का जज्बा हो। शिक्षक को भी कताई बुनाई आनी चाहिए ताकि वो बच्चों को सिखा सके। वे कहते थे शिक्षक को सादा जीवन, उच्च विचार वाला होना चाहिए। छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, डंडे से नहीं प्रेम से पढ़ाना चाहिए। कक्षा में भी सत्य बोलना और किसी से नफरत न करने की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक गांव में जाएं, लोगों को साक्षर बनाएं और सफाई सिखाएं। गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि आज के बच्चे टॉपर तो बन रहे हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन रहे। गांधी जी कहते थे पहले चरित्र फिर डिग्री। डिग्री लेकर भी बच्चे बेरोजगार हैं क्योंकि हमने हाथ का काम सीखना छोड़ दिया। गांधी जी की स्किल डिग्री वाली सोच आज सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत बोझ है। गांधी जी खेल, कला और प्रकृति के साथ शिक्षा चाहते थे। गुरुजन सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते, भविष्य गढ़ते हैं। गांधी जी चाहते थे कि हर शिक्षक अपने छात्र से ये 3 सवाल पूछे। पहला, क्या तुम सच बोलते हो? दूसरा, क्या तुम अपने हाथ से कुछ काम कर सकते हो? और तीसरा, क्या तुम कमजोर व्यक्तियों की मदद कर सकते हो? अगर इन 3 सवालों के जवाब हाँ हैं, तो समझिए आपकी शिक्षा सफल है। महात्मा गांधी ने शिक्षक को केवल साक्षरता न मानकर बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगिक विकास का माध्यम माना। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के जरिए शिक्षा को स्वदेशी हस्तशिल्प से जोड़ने और शिक्षकों को नैतिक मार्गदर्शक व चरित्र निर्माता के रूप में स्थापित किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि छात्र सहजता से सीख सके। पढ़ाई के साथ किसी उत्पाद हस्तशिल्प जैसे बुनाई, कृषि आदि से आत्मनिर्भर बने। गांधी जी शिक्षा को मानव के सर्वांगिक विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगिक विकास से है। उनका मानना था कि केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है बल्कि यह इंसान की भीतरी शक्तियों को बाहर लाने का साधन है। महात्मा गांधी ने विद्यालय और महाविद्यालय दोनों स्तरों पर सभी शिक्षकों से छात्रों को नैतिकता और सदाचार को उचित शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। इस संबंध में शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश सुझाते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों में उच्च नैतिक मूल्यों और मजबूत चरित्र का विकास करना शिक्षा का कर्तव्य है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। उनका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना था और उन्होंने बच्चों को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए गतिविधि केंद्रित शिक्षा की वकालत की। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का आधार भारतीय संस्कृति है जो प्रत्येक बच्चे को उसकी

0: जाति धर्म का ख्याल किए बिना मिलनी चाहिए। वास्तव में यह शिक्षा बच्चे को बुनियादी आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों से घनिष्ठ संबंध रखती है। शिक्षा बच्चे के भविष्य में होने वाली प्रवृत्तियों और संभावनाओं का भी ख्याल रखती है। जिस समाज में बच्चा पैदा हुआ है उस समाज की बुनियादी जरूरतों का ध्यान शिक्षा ही रखती है। वास्तव में शिक्षा देश की जनता और साधारण आदमी के लिए बनाई गई है, क्योंकि देश का साधारण आदमी ही देश की नींव होता है। शिक्षा का अर्थ बच्चे के शरीर, मन और आत्मा का सबसे अच्छा विकास करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना नहीं बल्कि अच्छा चरित्र और नैतिक मूल्य पैदा करना है। विद्यालय ऐसा हो जहां बच्चा पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बनना सीखे। शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सके और बालक के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास कर सके। बालक के सर्वांगिक विकास हेतु उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सके। गांधी जी ने शिक्षा को सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं माना। उनके लिए शिक्षा का मतलब था सर्वांगिक विकास, शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास, बिना जाति धर्म के, भेदभाव के बिना सभी बच्चों को समान शिक्षा। उनका शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना था। शिक्षा को सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि कारीगरी, स्वास्थ्य, सफाई, नैतिकता भी सिखानी चाहिए। कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वे बहुत ही बड़े शिक्षक और दार्शनिक और विद्वान हुए हैं। गांधी जी ने शिक्षा को बाजार नहीं मंदिर माना। उन्होंने शिक्षा को नौकर नहीं राष्ट्र का निर्माता माना। आज हमें अंग्रेजी और डिग्री के साथ साथ गांधी जी की नई तालीम को भी अपनाना होगा, तभी हम साक्षर भारत के साथ साथ संस्कारी भारत और आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। सच्ची शिक्षा वो है जो बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करे, समाज का उपयोगी सदस्य बनाए और देशभक्त इंसान बनाए। शिक्षक वो कुम्हार है जो मिट्टी जैसे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाता है। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख है वहाँ। अगर इमारत है देश तो नींव है शिक्षक। जीवन की हर मुश्किल का समाधान है शिक्षक। बिना गुरु के जीवन अधूरा सा लगता है, क्योंकि ज्ञान का सच्चा वरदान है शिक्षक।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था शिक्षा और शिक्षकों पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

से पूरी मानवता को जीवन जीने की राह दिखाई। इस जन्माष्टमी हम भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा, उत्साह और निष्काम कर्म का दीपक जलाएं। और दोस्तों, आज का सवाल भी जन्माष्टमी स्पेशल है, यानी भगवान श्री कृष्ण की कौन सी सीख आपको लगता है कि आज के समय में सबसे प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। निष्काम कर्म, धैर्य, प्रेम या जीवन को मुस्कुराकर जीने की कला। अपने विचार हमें भेजिए इस ईमेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। तो भक्ति, संगीत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का ये खास जन्माष्टमी स्पेशल शो घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म शागिर्द से। और आज का सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं कि भगवान श्री कृष्ण की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आज के समय में वो सबसे प्रासंगिक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई। और दोस्तों, आज का दिन भक्ति का है, उल्लास का है, प्रेम का है और विश्वास का है। मंदिरों में सजी मनमोहक झांकियां, कान्हा के मधुर भजन, फूलों की सुगंध, झूलों में विराजे लड्डू गोपाल और राधे राधे की गूंज, पूरा वातावरण जैसे आनंद और भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो हर हृदय में स्वयं नंदलाल विराजमान हो। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं है दोस्तों, बल्कि उस दिव्य चेतना का उत्सव है जिसने संसार को प्रेम, करुणा, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण का अवतार हमें ये विश्वास दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक नई सुबह जरूर आती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, मुस्कान कभी नहीं छूटनी चाहिए। बचपन की नटखट शरारतों से लेकर जीवन के सबसे कठिन निर्णयों तक उन्होंने हर भूमिका को सहजता, बुद्धिमानी और प्रेम से निभाया। शायद इसलिए श्री कृष्ण हर उम्र के अपने लगते हैं। बच्चों के लिए नटखट कान्हा, युवाओं के लिए सखा, माता पिता के लिए आदर्श पुत्र और जीवन की उलझनों में भटकते मन के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक। माखन चुराने वाले कान्हा, गोपियों के प्रिय वही श्याम और महाभारत के रणक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर जीवन का अमूल्य ज्ञान देने वाले भी वही श्री कृष्ण। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य प्रेम में है, सबसे बड़ी शक्ति धैर्य में है और सबसे बड़ी विजय अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने में है। जब मन में करुणा हो, व्यवहार में विनम्रता हो और कर्म में ईमानदारी हो, तब हर दिन एक उत्सव बन जाते हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास है, जहाँ निस्वार्थ सेवा है, जहाँ विश्वास है, वहीं सच्ची भक्ति है, वहीं सच्ची जन्माष्टमी है।

अभी हम सुन रहे थे हेमलता को फिल्म गोपाल कृष्णा से। और आइए अब चलते हैं भारत की एक ऐसी यात्रा पर जहां जन्माष्टमी के अनेक रंग हैं लेकिन भाव सिर्फ एक, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। तो शुरुआत करते हैं मथुरा वृंदावन से, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को जैसे ही 12 बजते हैं, मंदिरों में शंखनाद, घंटियां और नंद के आनंद भयों की गूंज सुनाई देती है। लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है, पालना झुलाया जाता है और भक्त नंद के घर आनंद भयो गाते हुए प्रसाद बांटते हैं। अब चलते हैं गुजरात की द्वारका नगरी, जहां श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। यहां उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पूजा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष ध्वजारोहण होता है, इसकी भव्यता बस देखते ही बनती है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी का अर्थ है दही हांडी, ऊंची मटकी, मानव पिरामिड और गोविंदा आलारे का उत्साह। यह केवल खेल नहीं बल्कि सहयोग, साहस और विश्वास का प्रतीक है। गुजरात के कई हिस्सों में जन्माष्टमी की रात रास और गरबा का आयोजन होता है। ओडिशा में लोग इसे भगवत गीता का इस दिन पाठ करते हैं। कई स्थानों पर पूरी रात भजन कीर्तन चलता है और अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर की जन्माष्टमी अपनी दिव्य रास लीला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ वैष्णव परंपरा के अनुसार शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मणिपुरी नृत्य शैली का अनमोल स्वरूप माना जाता है। दक्षिण भारत में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बनता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में घर के आंगन में चावल के आटे से नन्हे नन्हे पद चिन्ह बनाए जाते हैं, मानो बाल गोपाल स्वयं घर में प्रवेश कर रहे हों। केरल के गुरुवायूर मंदिर में श्री कृष्ण को गुरुवायु रप्पन के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, विशेष पूजा अर्चना होती है। तो कितनी अद्भुत बात है ना, कि कहीं वे कान्हा है, कहीं गोपाल, कहीं द्वारकाधीश, कहीं श्रीनाथ जी, तो कहीं गुरु वायुरप्पन। नाम बदल जाते हैं पर प्रेम नहीं। यही तो है भारत, अनेक भाषाएं, अनेक परंपराएं, अनेक रंग, लेकिन भाव सिर्फ एक, श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म ब्लफ मास्टर से। और चलिए, मेल्स हमारे पास आ चुके हैं और अनिल मेहता जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की निष्काम कर्म की सीख आज के भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा भरे दौर में सबसे अधिक प्रासंगिक है। चरणदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्नेही रूप बहुत अच्छा लगता है, उनकी लीलाओं में बहुत शिक्षा मिलती है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, सिद्धांत अपनाकर हम सभी काम करते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि क्या आप वही मंजुला जी हैं जो शनिवार को आधाकाश प्रोग्राम में आती थी? जी हाँ, मैं वही हूँ, बिल्कुल सही पहचाना। और आदित्य मुद्गल जी लिखते हैं कि मेरे अनुसार निष्काम कर्म आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। और रमीशा जैन जी लिखती हैं कि मेरे विचार से आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की निष्काम कर्म की सीख सबसे अधिक प्रासंगिक है। आज मनुष्य अपने कर्म से अधिक उसके परिणाम को लेकर चिंतित रहता है, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या प्राप्त होगा। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ये संदेश कि कर्म करना हमारे हाथ में है, उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है, मन को एक अद्भुत शांति देता है, बहुत ही खूबसूरत। और अनन्या श्रेष्ठा जी लिख दिए हैं कि मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म की सीख आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। और ऐना लिखती हैं कि मुझे लगता है आज के तनावपूर्ण जीवन में श्री कृष्ण की जीवन को मुस्कुराकर जीने की कला सबसे अधिक प्रासंगिक है। परिस्थितियां हमारे अनुसार रही होंगी, लेकिन मुश्किलों के बीच में भी सकारात्मक रहना, रिश्तों को प्रेम से निभाना और जीवन का आनंद लेना हमें

0: इतर से मजबूत बनाता है। बहुत ही खूबसूरत। गौरी शंकर वर्मा जी लिखते हैं कि आपकी पूरी टीम को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इंसान की पूरी जिंदगी की सच्चाई कह दी है। अच्छाई बुराई दोनों के बारे में समझ में नहीं आ रहा, उनके बारे में क्या कहें, एक एक शब्द सुनने लायक है। इंसान इस पर अमल करे तो पूरी जिंदगी खुशी से गुजरती है। बहुत ही खूबसूरत लिखा आपने। प्रमोद मिश्रा जी लिखते हैं कि मेरे लिए निष्काम कर्म सबसे अधिक प्रासंगिक है, परिणाम की चिंता त्याग कर संपूर्ण निष्ठा से कर्म का प्रतिपादन ही श्रेयस्कर है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हमारा अधिकार कर्म कर पर है, फल पर नहीं। बहुत ही अच्छा लिखा आपने। सुदर्शन मुखी जी भी लिखते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ऐसे जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया बात। और श्री पाल गोयल जी लिखते हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज मेरा भी जन्मदिन है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बर्थडे के लिए भी और जन्माष्टमी के लिए भी। बहुत ही अच्छे मेल्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा, और आप सबके जो विचार हैं उसको जानकर यही लगा कि निष्काम कर्म पर आप सबका भरोसा है, तो इसी तरह भरोसा बनाए रखिए और जन्माष्टमी का उत्सव अच्छी तरह से मनाइए।
1: तत मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाद दिग नाद दिग दिग धो दिग दिग धो दिग दिग राम तत तई राम तत तई राम तत तई।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म थी परिवार। और दोस्तों, त्योहार ये केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, बल्कि घर आंगन में

बिखरी खुशी, रिश्तों की गर्माहट और यादों की ऐसी पोटली होते हैं जो उम्र के हर पड़ाव पर साथ चलती है। समय बदला है, जीवन की रफ्तार बदली है, लेकिन त्योहारों की खुशबू आज भी वही है। अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछें कि पहले जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती थी, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। कई दिन पहले से ही घर की साफ सफाई शुरू हो जाती थी, कान्हा के लिए छोटा सा झूला सजाया जाता, नए वस्त्र पहनाए जाते और मंदिर को फूलों से सजाया जाता। रसोई में दिन भर तैयारियां चलती थी, श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए उनके प्रिय माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर, पेड़े, लड्डू और घर में बनी तरह तरह की मिठाइयाँ बड़े प्रेम से बनाई जाती थी। आधी रात तक पूरा परिवार जागकर कान्हा के जन्म की प्रतीक्षा करता था और जैसे ही 12 बजते शंखनाद, घंटियों की गूंज और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता था। और सबसे सुंदर बात यह थी कि त्योहार सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहते थे, पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे। कोई प्रसाद लेकर आता था, कोई घर की बनी मिठाई, बच्चे जो हैं वो झांकियां देखने निकल पड़ते थे, तो महिलाएं भजन कीर्तन में मगन हो जाती थीं। दरवाजे हमेशा खुले रहते और दिल भी। आज तस्वीर थोड़ी सी अलग है, ऑनलाइन विशेज हैं, डिजिटल निमंत्रण है, तैयार मिठाइयां हैं और व्यस्त दिनचर्या भी। सुविधाएं बढ़ी हैं, समय की बचत भी होती है, दूर बैठे लोग अपने वीडियो कॉल पर अपनों से जुड़ जाते हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, वो है त्योहारों का असली अर्थ, वो है अपनों के साथ बिताया गया समय, प्रेम, सम्मान और अपनापन। हमारे वरिष्ठ जन इस बदलते दौर के सबसे सुंदर साक्षी हैं। उन्होंने मिट्टी के दियों की रोशनी भी देखी है और आज की जगमगाहट भी। उन्होंने हाथ से बने भोग और प्रसाद का स्वाद भी चखा है और आज की आधुनिक सुविधाओं को भी अपनाया है, इसलिए उनकी यादें हमारे लिए अनुभवों का अनमोल खजाना है। तो आइए बदलते समय का स्वागत करें, लेकिन अपने जड़ों से जुड़ाव भी बनाए रखें, क्योंकि नए रंग तभी सबसे सुंदर लगते हैं जब उनमें पुराने जो यादों हैं उसकी खुशबू घुली होती है।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म खानदान से। और दोस्तों, आज के दौर में भी क्यों प्रासंगिक है गीता का ज्ञान। जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है, मन में एक साथ कई रूप उभर कर आते हैं। माखन चुराने वाले नटखट कान्हा, रास रचाने वाले बांसुरीधारी, सुदामा के सच्चे मित्र और महाभारत के महान रणनीतिकार। लेकिन इन सभी रूपों से ऊपर है उनका एक दिव्य स्वरूप, भारत की सनातन संस्कृति के नायक योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर अर्थात वो जिसने जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक संबंध और प्रत्येक परिस्थिति को योग बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन शब्दों से ऐसा प्रकाश दिया जिसमें केवल अर्जुन ही नहीं पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया। वही अमर संदेश है श्रीमद् भगवद्गीता। अक्सर लोग गीता को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये जीवन जीने की सबसे व्यवहारिक पुस्तक है। आज के तनाव, प्रतिस्पर्धा, असफलता, रिश्तों की उलझन और मानसिक दबाव के दौर में गीता पहले से भी कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम परिणाम को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि कर्म का आनंद ही भूल जाते हैं। परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर परिवार, यदि हम अपना बहुत अच्छा देते हैं, बेस्ट देते हैं और परिणाम को सहजता से स्वीकार करें, तो जीवन कहीं अधिक संतुलित हो सकता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय, यही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। तो इन्हें जीत लें, वही सच्चा विजेता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए उन्होंने समत्व का संदेश दिया। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही योग है। शायद यही कारण है कि गीता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रही। आज दुनिया के बहुत बड़े प्रबंधन संस्थान, नेतृत्व विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और प्रेरक वक्ता भी गीता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि समय बदलता है लेकिन सत्य नहीं। इस जन्माष्टमी पर यदि हम श्री कृष्ण से एक सीख अपने जीवन में उतार लें, तो वो ये होना चाहिए कि कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें, मन को संतुलित रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है और यही एक सफल, शांत और सार्थक जीवन की कुंजी भी है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अमर प्रेम से। और आज 4 सितंबर का दिन हमें दो महत्वपूर्ण अवसरों की याद दिलाता है। पहला, भारत के महान चिंतक अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी की जयंती, और उनका जीवन हमें सिखाता है ज्ञान और तर्क भी बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बन सकते हैं। और आज ही है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। हमारे जंगल, नदियाँ और वन्य जीव केवल प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि जीवन के संतुलन की आधारशिला हैं। और दोस्तों, वृंदावन की गलियों में जब भी कहीं बांसुरी की मधुर तान गूंजती है तो मन अपने आप ही शांत होने लगता है। और शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सजी बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि प्रेम, शांति और जीवन का प्रतीक मानी जाती है। तो जन्माष्टमी के इस अवसर पर जानते हैं कि बांसुरी केवल संगीत नहीं बल्कि एक तरह का थेरेपी भी है। और रोचक बात यह है कि बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति केवल संगीत ही नहीं रचता बल्कि अनजाने में एक प्रकार का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो भी करता है। लंबी और नियंत्रित सांसें फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने, मन को स्थिर रखने और शरीर को सहज बनाने में मदद करती है। यही कारण है कि कई लोग इसे ध्यान और योग के साथ भी जोड़ते हैं। तो श्री कृष्ण की बांसुरी का आध्यात्मिक संदेश भी उतना ही सुंदर है।

0: बांसुरी भीतर से पूरी तरह से खोखली होती है, तभी उसमें से मधुर स्वर निकलते हैं। मानो वो हमें सिखाती है कि जब मन अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से खाली होता है, तभी जीवन में प्रेम, मधुरता और आनंद का संगीत गूंजता है।
1: जो मुझ में

अभी हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को फिल्म गीत से। और जन्माष्टमी पर केवल मंदिर ही नहीं सजते बल्कि मन भी सजता है, और जब मन में कान्हा बस जाए तो श्रृंगार भी केवल फैशन ही श्रद्धा का रूप बन जाता है। तो राधा कृष्ण की प्रेममयी छवि से प्रेरित जन्माष्टमी का श्रृंगार आज परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बन चुका है। तो अगर आप भी इस बार कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जिसमें भक्ति भी झलके सौंदर्य भी, तो चलिए कुछ सजेशंस हम देते हैं। सबसे पहले रंगों की बात। इस दिन पीला, केसरिया, मोरपंखी, हरा, नीला, गुलाबी और सफेद रंग सबसे शुभ माने जाते हैं। ये केवल आकर्षक ही नहीं लगते बल्कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उनकी लीलाओं का प्रतीक भी माने जाते हैं। अगर भारी परिधान पहनना पसंद ना हो तो हल्की सूती या रेशमी साड़ी, अनारकली लहंगा या इंडो एथनी कुर्ता भी बहुत ही खूबसूरत लग सकता है। अब बात आभूषणों की। इस बार भारी गहनों की जगह टेम्पल ज्वेलरी जो होते हैं उससे खुद को सजाएं। मोतियों की माला, कुंदन के झुमके, चूड़ियां और छोटी सी नथ आपके रूप में पारंपरिक गरिमा जोड़ सकती है। बालों में गजरा, ताजे फूल और मोरपंख से सजा हेयर एक्सेसरीज पूरे श्रृंगार को एक अलग ही पहचान दे सकता है। और हाँ, जन्माष्टमी का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक माथे पर सुंदर सी बिंदी और उस पे चंदन का तिलक ना हो। तो असली सुंदरता केवल चेहरे पर नहीं भाव में होती है। जब मन में प्रेम, आंखों में श्रद्धा और चेहरे पर मुस्कान हो तब हर स्त्री में राधा का सौंदर्य और हर घर में वृंदावन की झलक दिखाई देने लगती है।

अभी हम सुन रहे हैं आशा भोसले को, फिल्म लगान से साथ में हैं उदित नारायण भी। और आज के इस पावन दिन पर बस यही कामना है कि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, प्रेम, धर्म और करुणा की सीख आपके जीवन को सदैव प्रकाशमय बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण

0: वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
2: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्म का ये सबसे प्रचलित गीत है जो सत्या फिल्म के लिए सबसे हिट साबित हुआ और कई सिने प्रेमियों के दिल में आज भी ये गीत बसता

0: ये सच है दोस्तों कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दिल के कोने में हमेशा के लिए बस जाती हैं, जिनका हर सीन कल्ट बन जाता है। इस फिल्म में हमें मनोज बाजपेयी, जीडी चक्रवर्ती, सौरभ शुक्ला, परेश रावल, उर्मिला मातोंडकर, गोविंद नामदेव, मकरंद देशपांडे, शेफाली शाह, नीरज वोरा, सुशांति सिंह जैसे एक्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने अपने रोल में भरपूर अभिनय किया है। और ये फिल्म ऐसी रही जो रिलीज होते ही फ्लॉप साबित तो हुई, लेकिन हफ्ता बीतते बीतते ही अचानक थिएटर्स में मूवी के टिकट ब्लैक में बिकने लगे और आगे चलकर फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। बॉलीवुड की बेहतरीन गैंगस्टर बेस्ड क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक ये फिल्म रिलीज के कई साल बाद तक फैन फॉलोइंग के साथ आगे बढ़ती रही। इस फिल्म के बारे में करेंगे आगे और भी बातें, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम।
1: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, वेलकम बैक। आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, आपका शो चल रहा है एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं 1998 की फिल्म सत्या के बारे में। 90 के दशक में जहां गैंगस्टर फिल्मों को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाते थे, वहीं सत्या फिल्म ने मुंबई अंडरवर्ल्ड का असली चेहरा सामने रखा। फिल्म में किरदारों को आम इंसानों की तरह दर्शाया गया, तो जुर्म की दलदल में फंसे हुए लोगों को

बिल्कुल ऐसा दिखाया गया जैसे जीवन के सामने वो दृश्य चल रहा है। अपराधियों के मानवीय पहलू, जैसे उनका परिवार, उनका सुख दुख और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत करीब से दिखाने की कोशिश है सत्या। इस फिल्म में भीखू मात्रे और उसकी पत्नी प्यारी मात्रे उर्फ शेफाली शाह का किरदार इसके बेहतरीन उदाहरण है। तो फिल्म के बारे में आगे भी बात करेंगे। और सत्या में जो इस फिल्म में सत्या बने थे वो थे मनोज बाजपेयी। रामगोपाल वर्मा ने शुरुआत में मनोज बाजपेयी को मुख्य किरदार सत्या के रोल के लिए साइन किया, लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट पर काम बढ़ा उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म के सबसे अहम गैंगस्टर किरदार भीखू मात्रे के लिए एक ऐसे अभिनेता की ज़रूरत है जिसकी हिंदी पर मजबूत पकड़ हो। इसके बाद मनोज बाजपेयी को भीखू मात्रे का आइकॉनिक रोल मिला और मुख्य भूमिका जेडी चक्रवर्ती के पास चला गया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

इस फिल्म के सभी कलाकार, एक्टर्स और इस फिल्म से जुड़े सभी लोग दोस्तों न्यूकमर्स थे, जिन्हें राम गोपाल वर्मा अपने साथ लाए। मुंबई अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर बेस्ड इस फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि फिल्म के कई सीन सेट पर ही लिखे गए और जिस समय ये फिल्म आई उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया, वहाँ के लोग, सारे पहलुओं को निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने इस कहानी में पिरोकर बनाई थी सत्या। जानते हैं, जिस दिन फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी उस दिन इस फिल्म की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, जिसमें मनोज बाजपेयी द्वारा निभाया गया भीखू मात्रे का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया। उनका संवाद मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे, आज भी कल्ट माना जाता है। इस दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्र

1998 की रिलीज फिल्म सत्या, रामगोपाल वर्मा की फिल्म की बात हो रही है, एक ही फिल्म से के आज के इस सफर में। और आप सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हम बताना चाहते हैं, ipradiodelhi@gmail.com पर आप बता सकते हैं आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हमारा जो हमारी प्रतीक्षा है आपके संदेशों के लिए, और आप सुनते रहिए हमारे साथ इस सफर में आज की कहानी। फिल्म की पटकथा और संवाद अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला ने लिखे। उन्होंने किरदारों की भाषा को मुंबई या टच में रखा, जैसे कल्लू मामा सौरभ शुक्ला ने उस रोल में काम किया, और उनका जो गाना था गोली मार भेजे में, उस गीत ने ये कमाल कर दिया कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में बना था दोस्तों, बिना कोरियोग्राफर के शूट हुए। और जानते हैं इस गीत के फिल्मांकन का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा ये रहा कि फिल्म के संपादक अपूर्व असरानी बी रोल शूट करने गए थे, और तब वर्ली में पूनम चेंबर्स की बिल्डिंग गिरी थी, इसलिए पुलिस किसी को वहां जाने नहीं दे रही थी। तब अपूर्व ने स्लम के पीछे वाले रास्ते से चुपके से वहां पर प्रवेश किया और 2 शॉट ले लिए। वही शॉट टाइटल में बम ब्लास्ट के रूप में दिखाए गए और गीत गोली मार भेजे में वो शामिल किए गए। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

इस फिल्म को पसंद करने वाले बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके संदेश हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और अमित आहूजा जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी जानकारी उन्हें बहुत रोचक लग रही है। बहुत शुक्रिया। और अगला संदेश है हीरामणि वर्मा का दतरंगी भाटापारा से, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जन्माष्टमी की बधाई के साथ एक ही फिल्म से की प्रस्तुति को सुन रहे हैं हमारे श्रोता साथी संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और उसी तरह हमारे एक श्रोता साथी हैं, ये हैं सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और जानकारी भी अच्छी लग रही है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांतिनगर सोनीपत से और उन्हें भी कार्यक्रम बहुत रोचक लग रहा है। और हमारे साथ हैं प्रेम सागर, शुभ, लता, खजाना गेट अमृतसर से, वो भी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगनिया, नमन ढिंगनिया और अपार ढिंगनिया। और इसी तरह से शाइना हसन, सैयद मसरूर, अक्सा अदीब, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। भंवरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन हैं और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कार्यक्रम सुन रहे हैं। और धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद और बेबी आलिया और अयान बाबू सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और जानकारी उन्हें बहुत अच्छी लग रही है और उन्हें ये फिल्म भी पसंद है। जी बहुत शुक्रिया। और आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, एक ही फिल्म से के इस सफर में। और सत्या से जुड़ी बातें, सत्या का संगीत विशाल भारद्वाज ने तैयार किया, गाने के बोल गुलजार ने लिखे, विशाल भारद्वाज का संगीत और संदीप चौटाला का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान बने। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के थ्रिल को कई गुना बढ़ाने वाला था। फिल्म की शूटिंग के लिए हैंड हेल्ड कैमरों और रियल लोकेशंस यानी मुंबई की जो तंग चौल थी उनका चयन किया गया और वहां ही सारी शूटिंग हुई। और दर्शकों ने यह महसूस भी किया होगा कि खुद उस माहौल को उन्होंने उस फिल्म में भी देखा होगा। सत्या ने बॉलीवुड को जो घिसे पिटे फॉर्मूले थे उससे बाहर निकाला और नए निर्देशकों को, उन्होंने अभिनेताओं को तरक्की के लिए नए रास्ते खोलकर दिखाए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आप सुन रहे हैं आज कल्ट मूवी सत्या की बातें और फिल्मी समीक्षा। जानते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में गणपति विसर्जन वाला मर्डर स्क्रिप्ट में था ही नहीं और एडिटिंग में विसर्जन के फुटेज देखकर राम गोपाल वर्मा ने डुप्लीकेट मूर्ति बनवाकर इसे शूट करवाया था। और भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक सत्या ने फिल्मों में यथार्थवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक ये फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें मनोज वाजपेयी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और कई फिल्मफेयर पुरस्कारों से उसे नवाजा भी गया था। और इस फिल्म में से सत्या की कहानी और गीत की समीक्षा आप जब सुन रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि इस फिल्म की एक एक रवानी आपके भीतर झूमने लगी होगी, आपको याद आने लगा होगा अगर आपने ये फिल्म देखी है तो। और अगर नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश है कि इस फिल्म को जरूर देखिए। चलिए फिलहाल सुनते हैं इस जानकारी में आज की अंतिम प्रस्तुति ये गीत।

एक ही फिल्म से कि आज के इस सफर में आप थे मेरे यानी मनीषा के साथ। तो आशा करते हैं आपको आज की जानकारी आई होगी पसंद और इसी फिल्म के इस गीत के साथ एक ही फिल्म से के इस सफर को करते हैं हम समाप्त। अब मुझे यानी आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मनीषा बोस को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही समय में आप समाचार सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: दिल्ली के अंदर तो नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबर दिमाग मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दिमाग खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह EOS-5 के सफल लॉन्च में भारत की बुलाटी करना परिभाषित करने वाली समर्थावान का चिंकारा दिखाया। ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। भगवान श्री कृष्ण देव जन्म दिवस का त्यौहार जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा के उत्साह मनाया जा रहा है। नेपाल हालात के बाद एक बड़े बचाव यत्न में त्रिशूली तीन एक पनबिजली प्रोजेक्ट में इस चरण में फंसे दो लोगों ने 10 दिन बाद जिंदा बचाया गया। बचाना मास्टर्स बैडमिंटन में सातवीं सर्वराज रणकी रेड्डी की चिराग शेट्टी ने भारतीय जोड़ी आज शाम सेमीफाइनल में सामना ले डेनमार्क की जोड़ी खिलाफ मैदान छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो सिम को न सौंपे तो भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह EOS-5 में लेकर जाने वाले GSLV-F17 में सफल लॉन्च की शुरुआत की है। इस प्रशुभ के पश्चिम श्री मोदी ने सफल लॉन्च में भारत के पराड़ क्षेत्र में प्रभाषित करने वाली मुहारत नवीनता और बदलिया समृद्धावा का चिंकारा किया। उन्होंने इसरो वाले शानदार प्राप्ति के देश में एक मान वाला पल भी किया। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन ने आज सूर्य आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा विखे सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो GSLV-F17 रॉकेट के EOS-05 तत्वों उपग्रह में सफलता न लॉन्च किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत ने धरती निरीक्षण समर्थावान और मजबूत करेगा तो धरती निरीक्षण सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करेगा।
2: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट GSLV एफ मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रहता को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: प्रबंधन वर्ग के क्षेत्र में सहायता ने असल समय में तस्वीरें भेजेगा। इसरो के चेयरमैन ने भी कहा कि मिशन पर अध्ययन करते

유통선도 빠르노 홀 마스포트 레카 매장도 그러지 않게 닥터 지금도 쓰는 US 로컬 플랫 장관의 조상의 17대 서플 라운지 시나가 캐티에 익서플 미디어 포스트 닥터 쓰니까 기 US 05 파라 더파라 아카데믹 카트네리카 아카 이미징 업그레이드 공성 칼리카 반드토 라운지 기다가 에다 도시만 인프라렛 멀티 스펙트럴 아테 하이퍼 스펙트럴 마드라 위스 테스트를 고쩐디 사각티 닥터 쓰니까 기 프라임먼트 나렌드르 모디 디 도란디쇼 इंडोनेशिया यूएई बेलारूस पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका ईरान और उज़्बेकिस्तान के न्यायिक वक्ता ने मुख्य अदालतों में लिमिट मुकदम की मीटिंग आपसी न्यायिक हित के मामले पर सीधी गलबात और विचार वटांदरे वजों काम करेंगे जदों की सत्ता में वाली न्यायपालिका की शमूलियत और सेव को और मजबूत करेंगे एक तीन दिना फोरम हिस्सा लैंड वाली न्यायपालिका ने न्याय प्रदान करें अंतर्राष्ट्रीय विवाद हल टेक्नोलॉजी के निरंतर रहने और विकास में संबंधित समकालीन मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक प्लेटफॉर्म बजो काम कर दे तो एक न्यायिक आगवा विचार वटांदरे की सहूलत है भगवान श्री कृष्ण के जन्मदाता जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और खुशियों नाल मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में खास तौर पर खुशियां मनाया जा रही है पंजाब में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी धूम है पेश है एक रिपोर्ट

0: कुछ 100 बिटकॉइन से 2 लोकलों 10 दिन बाद जिंदा बचाया गया है। नेपाल फोर से लोक संपर्क डायरेक्टोरेट मुताबिक बचाव वर्करों ने सुरंग के अंदर आवाज सुनिया तो फंसे हुए लोकल नाल संपर्क कायम करने के बाद कार्रवाई तेज कर दी थी। एमरजेंसी टीमों ने हम तक 12,000 तो वह लोकल नो बचाया है। सरकार ने विदेश योगदान नेम शोध बिल 2024 के कथित केंद्रीय सांझी संसदीय कमेटी का गठन किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य किसी भी गैर सरकारी संगठन या संस्था वालों विदेशी योगदान की वर्तन बधेरे पारदर्शी बनाना और संस्थागत अधिकारियों की जवाबदेही यकीनी बनाना है। खेडा वियतनाम पिकल बॉल विश्व कप टीम मुकाबले के पहले दिन भारत जीते रहा। यह टूर्नामेंट 6 तरीक तक जारी रहेगा। इस नाल लीग पड़ा समाप्त होता है। भारत ने लीग पड़ा विच एंटीगुआ और बारबुडा इस दल के चेक कंट्रास को हराया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सातवें सोलह जैन खेडी और चिराग विश्व टीम की भारतीय जोड़ी आज साल जून के स्वेंजन विच सेमीफाइनल की स्थान बनाने डेनमार्क की जोड़ी खिलाफ मैदान से उतरेगी। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:10 पे शुरू होता मान है। भारतीय जोड़ी ने कल रात फ्रांस के टोमा चोले पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को 21-12, 24-9 हरा के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह TOS-05 के सफल लॉन्च को भारत के पुलाड़ क्षेत्र में प्रभाषित कर समर्थाओं का छलकारा दसिया। ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम नवी दिल्ली विच शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का त्यौहार जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा के उत्साह मनाया जा रहा है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सातवें सर्वेश रणकी रेड्डी चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शाम सेमीफाइनल की स्थान बनाने डेनमार्क की छोड़ी खिलाफ मैदान चुकेगी। इस दौरान की साढ़ा यह बुलेटिन खत्म होगा। साढ़ा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमीन का मुशाहिदा करने वाले EOS-05 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ दागने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के खलाई शोबे की बढ़ती हुई सलाहियतों का इजहार होता है। मरकज नेपाल में लापता अफराद के करीब तरीन रिश्तेदारों के लिए DNA की शिनाख्त की खिदमात फराहम करेगा। तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,282 हो गई है। ब्रिक्स का चीफ जस्टिस फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जिसमें इंसाफ की फराहमी और तनाज़ात को हल करने से मुतालिक दौरे हाजिर के मामलात पर बातचीत की जाएगी। आज पूरे मुल्क में भगवान कृष्ण के यौम पैदाइश जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और चाइना ओपन बैडमिंटन में आज शाम क्वार्टर फाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क की एक जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे इसरो की एक गिरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए एक फख्रिया लम्हा करार दिया। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आज सुबह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुरे अर्ज के मुशाहिदे से मुतालिक अपना सैटेलाइट EOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि इस मिशन से भारत की कुरे अर्ज के मुशाहिदे की सलाहियतों में इजाफा होगा और इससे मुतालिक खिदमात की फराहमी बेहतर होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इसरो ने कहा है कि 2367 किलोग्राम के सैटेलाइट को इसके छोड़े जाने के तकरीबन 18 मिनट बाद मुतल्लिका मदार में पहुंचा दिया गया। EOS-05 कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाला जदीद तर्ज का सैटेलाइट है और ये जमीन के मुतवाजी मदार में पहुंचाए जाने वाला पहला इमेजिंग सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट कम वक्त में वसी इलाकों की तस्वीरें फराहम कर सकेगा, जिससे कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी। सैटेलाइट से हासिल होने

0: कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की हयात और उनका पैगाम इंसानियत को सच्चाई, फ़र्ज़ की अदायगी और नेक अमल अंजाम देने की तरगीब देती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के रूहानी पैगाम से बेलौस खिदमात की तरगीब मिलती है, जिसने हमें हमेशा इंसानियत को रहनुमाई फराहम की। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक के लिए मध्य प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मुल्क के शिमाल मशरक़ी इलाके में भी शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और बिजली की सूरत हाल बदस्तूर जारी रहेगी। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के ज्यारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती दस्तों पर किए गए दो हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक दोनों हमलों में फौजी हमले के 25 अफराद हलाक और बहुत से अफराद जख्मी हो गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी किम अस्तरूप और AS रस्मुसन की डेनमार्क की जोड़ी से मुकाबला करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़मीन का मुशाहिदा करने वाले EOS-05 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ दागने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के खलाई शोबे की बढ़ती हुई सलाहियतों का इजहार होता है। मरकज नेपाल में लापता अफराद के करीब तरीन रिश्तेदारों के लिए DNA की शिनाख्त की खिदमत फराहम करेगा। तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,282 हो गई है। ब्रिक्स का चीफ जस्टिस फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जिसमें इंसाफ की फराहमी और तनाज़ात को हल करने से मुतालिक दौरे हाजिर के मामलों पर बातचीत की जाएगी। आज पूरे मुल्क में भगवान कृष्ण के यौम पैदाइश जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. And in China Open Badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Danish pair in quarterfinals this evening. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV-F17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite, from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV-F17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our

0: and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood affected areas today. Sabita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sai Raj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Skarup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी एफ 17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईओएस 05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
2: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह तीन दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे

0: मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
3: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
4: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन

0: की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है।

0: एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम है कि आपको भी हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार का इंतजार रहता है। तो अब इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और लेकर हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर। आज मैं हूं आपके साथ अरुणेश कुमार, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपने सुना जो एक गाना, और ये गाना दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था, और ये सुपर डुपर हिट सॉन्ग फिल्म दीवाना से था। और आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं, और अगर नहीं समझे तो एक और गाना सुनाते हैं, और इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अंदाजा लगा ही चुके हैं। और इस गाने को सुनकर आपको एक बार और आपका जो अंदाजा है वो पक्का हो जाएगा कि आज के हमारे कलाकार कौन है।

जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे कलाकार हैं दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर साहब। आज 4 सितंबर है और आज ही के दिन यानी उनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और आज हम उनकी 74वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने बतौर अभिनेता 1973 में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म बॉबी से अपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की।

दोस्तों, और इसके बाद साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म नगीना में ऋषि कपूर के अभिनय को लोगों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए काजल किरण, तारिक और जीनत अमान जैसे कलाकार। और बात करें अगर साल 1982 की, क्योंकि इसी साल रिलीज हुई थी प्रेम रोग। इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे के अलावा शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा और राजा मुराद मुख्य किरदार में थे। और इस फिल्म में जो इसकी स्टोरी थी, जो कहानी थी, उसमें विधवा पुनर्विवाह मुख्य केंद्र बिंदु था। तो 1982 में उस तरह की बातें करना और हमारी इस फिल्म के माध्यम से समाज को संदेश देना एक बहुत बड़ा कदम था। और इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले आपको इसी फिल्म से सुनाते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक और अल्ताफ का मैसेज आया है। खतीजा बेगम, आफरीन कौसर और नीलोफर फातिमा का भी संदेश हमारे पास पहुंच चुका है और इन्होंने लिखा है कि अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में आप बेहद ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के गीत सुनकर हमें बेहद आनंद आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, भले ही ऋषि कपूर साहब ने डेब्यू किया हो फिल्म बॉबी से 1973 में, लेकिन दरअसल उनकी शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके अलावा अगर उनकी लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं कर्ज, चांदनी, प्रेम रोग और सागर। ये सारी फिल्में उनकी यादगार रोमांटिक फिल्में थीं। इसके अलावा अगर उनकी विविध भूमिकाओं वाली फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अग्निपथ, मुल्क और शर्मा जी नमकीन जैसी फिल्मों में गंभीर और अलग अलग किस्म के किरदार निभाए जो दर्शकों को बेहद पसंद आए। और एक फिल्म आई थी दामिनी, इस फिल्म में उनके साथ थे ऋषि कपूर के साथ में थे सनी देओल, अमरीश पुरी, और इस फिल्म से भी ऋषि कपूर साहब को अच्छी खासी पहचान मिली थी और सनी देओल पाजी को भी इस फिल्म से काफ़ी अच्छी पहचान मिली थी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं इसी दामिनी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये बेहद प्यारा सा नगमा।

दोस्तों आपके मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज आया है और इन्होंने श्री जी कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही लिखा है कि ऋषि कपूर पर केंद्रित ये कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। तो जी आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश आया है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम में ऋषि कपूर पर फिल्माए गाने आप सुनवा रहे हैं और ये गाने हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। ये संदेश आया है भवरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम और जगदीश देवांगन का। इसके अलावा एक और मैसेज आया है जो कि आया है हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार का। और आप सब ने हमारे इस कार्यक्रम की तारीफ की है तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बात अगर करें ऋषि कपूर साहब की तो ये अपने ज़माने में चॉकलेटी हीरो के रूप में बेहद लोकप्रिय रहे हैं। केवल 3 वर्ष की उम्र में ही उनकी पहली झलक फिल्मी पर्दे पर दिखी थी। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता राज कपूर साहब के बचपन का किरदार निभाया था और अपनी अभिनय यात्रा में उन्होंने अधिकांश रोल रोमांटिक हीरो वाले किए, लेकिन कुछ हटकर किरदार भी निभाए, जैसे कि अग्निपथ फिल्म जिसमें उनके साथ में साथी कलाकार थे ऋतिक रोशन और भी लोग उस फिल्म में थे। और इसके अलावा एक फिल्म आई थी जिसका नाम है लैला मजनू और इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने मजनू की भूमिका निभाई थी और इसे बेहद ही एक अलग पहचान मिली थी। अमर अकबर और अंथनी, इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। ऋषि कपूर की ये फिल्म आज भी लोग याद करते हैं और इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। 7 मई 1977 को रिलीज हुई इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने बेहद ही यादगार किरदार अकबर का निभाया था और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी नीतू कपूर। प्रेम रोग फिल्म की बात हम कर ही चुके हैं जिसमें उन्होंने देवधर नाम का किरदार निभाया था। इसके अलावा अपने लंबे फिल्मी सफर में ऋषि कपूर साहब ने एक फिल्म की थी लव आजकल और इसमें उनके साथी कलाकार थे सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण और इसमें वे बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में नजर आए थे। तो बात करें अगर अग्निपथ की तो पहली बार उन्होंने दमदार और जानदार शानदार किरदार, निगेटिव किरदार दरअसल निभाया था फिल्म अग्निपथ में और उनके किरदार का नाम था राउफ लाला। और इसके अलावा 2013 में आई फिल्म डी डे जो मुंबई के माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित फिल्म थी और इसमें उन्होंने दाऊद का किरदार निभाया था। तो आप कह सकते हैं कि कपूर एंड सन्स इसमें

0: उन्होंने 90 साल के दादाजी का रोल प्ले किया था और उनके किरदार का नाम था अमरजीत। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए थे सिद्धार्थ कपूर, आलिया भट्ट और फवाद खान। 102 नॉट आउट इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे, जो कि 2018 में आई थी। और इस फिल्म में उन्होंने 75 साल के बेटे का रोल प्ले किया था। वहीं पर अमिताभ बच्चन ने उनके पिता का किरदार निभाया था, जिनकी उम्र होती है 102 साल। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ऋषि कपूर साहब ने अपनी फिल्मों के किरदार में कितनी विविधता रखी है, और यही दर्शकों को बेहद पसंद आई है। तो एक और सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी चांदनी, जिसमें उनके साथी कलाकार थी श्रीदेवी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं चांदनी फिल्म से श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।
1: चांदनी

Yeah.

दोस्तों एक और संदेश आया है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट और पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना का। इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। जी बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे संदेश हमारे पास आए हुए हैं और हम सारे संदेश को शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, तो अगर कुछ संदेश शामिल ना हो पाए तो आप बिल्कुल ही नाराज़ मत होइएगा, हम अगले कार्यक्रम में आपके संदेश को ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की और एक और गाना सुनते हैं। उनकी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी और ये काफ़ी डिस्को वाला सॉन्ग है।

दोस्तों, ऋषि कपूर साहब की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फिल्म आई थी मुल्क, जो कि साल 2018 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल अलग सा था। इसमें उन्होंने बनारस के वकील मुराद अली मोहम्मद का ऐसा रोल निभाया था जिसका भतीजा आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है। इस फिल्म में उनके साथ थे तापसी पन्नू और प्रतीक बब्बर। हम आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन वे अपने किरदारों, अपने अभिनय और अपनी फिल्मी

दुनिया के माध्यम से, अपनी फिल्मों के माध्यम से अपने फैंस के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर आपसे होगी किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात। तब तक सुनते रहिए हमारा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्ते।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़।

दोस्तों आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

दोस्तों साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से आप बाल कृष्ण और माँ यशोदा के बीच के मासूम संवाद को दर्शाने वाला ये भक्तिमय गीत सुन रहे हैं। और इस गीत में मुख्य अभिनेत्री जीनत अमान के

बचपन का किरदार फिल्माया गया था, जिसे बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी कोल्हापुरी ने निभाया था। इस प्यारे से गीत के बोल पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे और इसका संगीत दिया था सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज दी लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

दोस्तों, ये गीत जो आप सुन रहे हैं राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म गीत गाता चल से है। ये एक बेहद ही लोकप्रिय और आध्यात्मिक गीत है और इसके रचयिता संगीतकार और इस गीत के पीछे की मूल भावना महान संगीतकार रविंद्र जैन साहब की है और इस अमर गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी ने, जो आज भी कृष्ण भक्तों और संगीत प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है और जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल इस गीत को सुना जाता है।

इस गीत के माध्यम से राधा और मीरा के सच्चे प्यार की परिभाषा को समझाया गया है और ये संदेश देता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी एक के नहीं हैं, बल्कि वे हर उस भक्त के हैं जो उनसे सच्चा प्रेम करता है।

उन पर श्रद्धा रखता है। और ये गीत फिल्माया गया है बेहद ही ग्रामीण परिवेश में, बेहद ही सादगी और प्रेम के साथ। और पर्दे पर इसे आप सचिन और सारिका पर फिल्माया गया है, जो कि आप फिल्म गीत गाता चल में देख सकते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो इस मौके पर हम आपको सुनवा रहे हैं कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत कुछ भक्ति गीत। और आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शागिर्द फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

आप जो ये गाना सुन रहे हैं ये 1967 में आई फिल्म शागिर्द से है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। और ये गीत पारंपरिक अर्थों में किसी पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, बल्कि एक भक्त की भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण और विनय की भावना को व्यक्त करता है।

इस गीत के बोल में एक साधारण भक्त की पुकार है जो अपनी कमियों और सीमाओं को स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण के द्वार पर शरण मांगता है और भक्त स्वयं को भगवान की प्रिय राधा जैसी उच्च कोटि की प्रेमिका या भक्त नहीं मानते बल्कि वो कृष्ण के प्रेम और उनकी कृपा की आस

दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं 1965 में आई हिंदी फिल्म खानदान का एक बेहद ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृष्ण भजन। इसे आवाज़ दी है राजेंद्र कृष्ण साहब ने, इसे लिखा है और संगीत रवि जी ने दिया है, और अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

यह गाना द्वापर युग में भगवान कृष्ण के प्रति ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के असीम प्रेम और उनके इंतजार को दिखाता है। और इस भजन के अंत में क्या कुछ

इस भजन में ये संदेश दिया गया है कि जब जब इस धरती पर संकट बढ़ता है तो भक्त अपने भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं कि वे आएं और गीता में दिए अपने वचनों को पूरा करें। इस संकट में है आज वो धरती, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में तूने दिया। फिल्म खानदान में ये एक परिस्थिति जन्य प्रेरणादायक भक्ति गीत है जो कि स्क्रीन पर आत्मा की परमात्मा के प्रति तड़प को दिखाता है।

दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर भगवान भी हैं। उन्होंने गीता में कर्म का संदेश दिया है और कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन दर्शन हम सबको मानवता का संदेश देता है और गलत को स्वीकार नहीं करने की बात भी कहता है, सच्चाई के पथ पर चलने का संदेश देता है। और महाभारत में उनकी भूमिका को अगर हम देखें तो पाते हैं कि वे हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे। और अब अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा एक और भक्ति गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

ये बेहद ही लोकप्रिय गाना 1985 में आई हिंदी फिल्म संजोग का है और इसे लिखा है गीतकार अंजान साहब ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म में इस गाने को फिल्माया गया है फिल्म की मुख्य अभिनेत्री जया प्रदापर।

पूरी की तरह है जिसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है और उसका अधूरापन और उसकी ममता साफ झलकती है। इस गीत के बोल में यशोदा और उनके नंदलाला यानी कृष्ण कन्हैया के प्रेम का संदर्भ लेकर एक माँ क्या अपने लाल के प्रति असीम स्नेह को दर्शाया गया है। इस गाने में जो जू जू जू जू जू की धुन और ढोलक की थाप इसे वास्तविक और भावुक लोरी का रूप देती है जो सुलाने और जगाने के

दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है और ये हर साल मनाया जाता है। और बात करें अगर पौराणिक मान्यताओं की, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी तिथि को आधी रात को मथुरा के कारागार में माता देवकी और पिता वसुदेव के यहाँ हुआ था। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और रात 12 बजे भगवान के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल के प्रकट होने पर उत्सव मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में दही हांडी प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं और कृष्ण भक्त अब घरों को और मंदिरों को भगवान के जन्म प्रसंग की सुंदर झांकियों के साथ सजाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा भक्ति गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गीत 1972 की प्रसिद्ध फिल्म अमर प्रेम का एक बेहद ही भावुक और लोकप्रिय गाना है। इसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने,

0: अमर प्रेम इस फिल्म में जब ये गाना अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था तो उनके साथ बाल कलाकार के रूप में थे मास्टर नंटू, और कृष्ण और यशोदा के रूप में इस गाने के जरिए यशोदा मैया और बाल कृष्ण की नटखट लीलाओं को याद किया गया है। ये गीत इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक महिला एक बच्चे को देखकर भगवान कृष्ण के बाल रूप और उनके वात्सल्य प्रेम से जुड़ जाती है। ये गीत दरअसल ममता, पवित्र प्रेम और वात्सल्य रस का अनूठा संगम है। दोस्तों, इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, फिर किसी न किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए बेहद ख्याल। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन कराम, हम आज लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम इस प्रोग्राम में किसी ख़ास मौजू पर माहिरीन से उनके ख्यालात जानते हैं और उनसे मुस्तकबिल में होने वाले उसके असरात पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज का प्रोग्राम एक ऐसे रिश्ते का नाम है जो सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक महदूद नहीं बल्कि नस्लों की तामीर, किरदार की तश्कील और मुआशरे के मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इल्म की फरावानी और मालूमात के शोर में उस्ताद का बदलता किरदार, रहनुमा, मुरब्बी या ख़ुद एक तालिब इल्म। जी हाँ, योम असाज़ा के मौके पर आज हमने अपने प्रोग्राम को तरतीब दिया है। कल यानी 5 सितंबर को भारत के दूसरे सदर जमहूरिया और माहिर तालीम सर्वपल्ली राधा कृष्णन के योम पैदाइश के मौके पर योम असाज़ा मुल्क भर में मनाया जाता है। हम तमाम असाज़ा को योम असाज़ा की मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी मुनासबत से आज योम असाज़ा के मौके पर हम बात करेंगे उस्ताद के कि वो उस्ताद जो कभी तख्ती और चाक के साथ इल्म बांटता था, फिर किताब, ब्लैक बोर्ड और प्रोजेक्टर तक पहुंचा, और आज एक ऐसे अहद में खड़ा है जहां तालिबे इल्म के हाथ में दुनिया भर की मालूमात चंद सेकंड में मौजूद है। गूगल है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन कोर्सेज है, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल लाइब्रेरियाँ हैं और अब मस्नूई ज़हानत यानी AI भी मौजूद है, तो जो सवाल पूछने पर चंद लम्हों में जवाब फराहम कर देती है। तो फिर सवाल यह है कि मालूमात हर तरफ मौजूद हों तो उस्ताद की ज़रूरत क्यों बाकी है? क्या उस्ताद अब भी मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया है या उसका किरदार बदलकर रहनुमा, मुरब्बी, मुशीर और एक ऐसा शख्स बन गया है जो ख़ुद भी हर रोज़ तालिब इल्म रहने पर मजबूर है? इन्हीं सवालात के गिर्द आज का हमारा खसूसी मुबाहिसा है। इल्म की फरावानी और मालूमात के शोर में उस्ताद का बदलता किरदार, रहनुमा, खुद एक तालिब इल्म। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन मुअज्ज़ज़ मेहमान। मैं खुश आमदीद करता हूं प्रोफेसर काजिम साहब का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं और तदरीस व तहकीक के मैदान में एक मारूफ नाम हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: बहुत शुक्रिया जी साहब।
1: हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नदीम अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर क्रोरीमल कॉलेज। आप बराह रास्त तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर नदीम साहब, आपको भी योम असाज़ा के इस खसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद है।
3: शुक्रिया।
1: और हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद अखलाक, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जामिया मिल्लिया से हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी हमारी महफिल में इस्तकबाल है। प्रोफेसर काजिम साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ एक बुनियादी सवाल से करना चाहूँगा। एक ज़माना था जब उस्ताद तालिबे इल्म के लिए इल्म का सबसे बड़ा बल्कि तकरीबन वाहिद ज़रिया हुआ करता था। आज तालिबे इल्म के पास मालूमात के बेशुमार ज़राए हैं, तो क्या हम ये कहें कि उस्ताद का रिवायती किरदार ख़त्म हो रहा है या उसकी मानवियत एक नए अंदाज में सामने आ रही है?
2: शुक्रिया शाहनवाज। अच्छा सवाल है कि मौजूदा दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और आपने वजह फरमाया कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है, वो AI हो, वो

0: टेक्नोलॉजी हो, वो गूगल है, वो कंप्यूटर है, वो मोबाइल है।
1: जी
0: तो पहले उस्ताद का काम तालीम तदरीस के साथ साथ इंफॉर्मेशन फराहम करने का भी हुआ करता था
1: जी,
0: लेकिन अब इंफॉर्मेशन तालिब इल्मों के पास मौजूद है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उस्ताद का काम ख़त्म हो गया
1: जी।
0: इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ चीज़ है और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल करने के जो ज़राए हैं उनमें से हर ज़राए पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं
1: जी।
0: सपोज उर्दू की हम अगर बात करें तो उर्दू का कितना डिजिटल मवाद मौजूद है,
1: बिल्कुल
0: पहले तो इस पर सवाल है
1: जी।
0: और AI हो या गूगल हो, वो जो भी सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल मवाद मौजूद है
1: जी
0: उसमें से तलाश करके आपको देता है।
1: बिल्कुल सही फरमाया।
0: तो हमने कितना डिजिटलाइज किया है उर्दू को
1: जी,
0: उसकी मुनासबत से वो हमें इंफॉर्मेशन फराहम करता है, वो हमें मालूमात फराहम करता है।
1: बिल्कुल।
0: और बहुत से ऐसे ज़राए हैं जिसकी मालूमात पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं इसलिए कि वो एडिटेबल है
1: जी,
0: उसको हम एडिट करते हैं
1: जी।
0: आज एक इन्फॉर्मेशन दिया, वहां इन्फॉर्मेशन आपको वो मिली, कल वो बदल गई तो वहां साइट पर भी चीजें बदल गई, कोई फलां अच्छा नहीं लगा तो हमने उसको एडिट करके किसी और के बारे में तफसील डाल दी, अपने बारे में तफसील डाल दी
1: जी।
0: तो उसमें से ही वो मवाद निकाल करके आपको देता है। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उस इन्फॉर्मेशन पर कितना यकीन करना है आपको,
1: बिल्कुल
0: किस इन्फॉर्मेशन पर यकीन करना है और कहां से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है,
1: जी,
0: यहां उस्ताद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
1: बढ़ जाती है।
0: पहली बात तो ऑथेंटिक कहां से इन्फॉर्मेशन हासिल करें आप, दूसरे उस इन्फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करें आप।
1: बिल्कुल सही
0: फरमाया, दोनों बातें अब उस्ताद के लिए हो गई है। तो उस्ताद की जरूरत अब ज्यादा हो गई है पहले के बनिस्बत कि उनकी तरबियत के साथ साथ उनको कैसे हासिल करनी है चीजें और कैसे उसको तरतीब देना है और अपने तहकीक में या अपने मवाद अपने काम के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करना
1: इस्तेमाल करना।
0: तो इसलिए दोहरी जिम्मेदारी है उस्ताद की और अब ज्यादा जरूरत है उस्ताद की।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। किसी शायर ने भी कहा था कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कहाँ से बचकर निकलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है।
0: बजा,
1: तो मुझे लगता है कि आज वही दौर आ चुका है। डॉक्टर नदीम साहब, आप चूँकि अंडर ग्रेजुएट तलबा से रोज़ाना रूबरू होते हैं, आप ये बताएं कि आज का तालिबे इल्म उस्ताद से पहले गूगल से सवाल पूछ लेता है, यूट्यूब से लेक्चर सुन लेता है और किसी भी मौजू पर सैकड़ों मजामीन और वीडियोज़ तक पहुँच सकता है, तो क्लासरूम में उस्ताद ऐसी क्या चीज़ दे सकता है जो इंटरनेट नहीं दे सकता?
2: उसके अंदर एतमाद पैदा कर सकता है और उसे बेहतर सोचने और अच्छा करने का एक दर्ज दे सकता है। और ये जितने भी इज्म हैं फ़िलासफ़ी के अंदर, इंडियन एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के अंदर, उनमें सब में यही बात है और ज़्यादातर जोर इसी बात पर दिया गया है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। अब बच्चे वहाँ से सोर्सेज उन्हें मालूम होते हैं, रिसोर्सेज मालूम होते हैं, वहाँ से वो चीज़ों को उठा लेते हैं, लेकिन उसकी एथेंटिसिटी कितनी है और वो कितने मुस्तनद हैं इस चीज़ को वो जाँच नहीं पाते हैं। मेरे सामने अक्सर ऐसे मामलात आ रहे हैं पिछले कुछ दिन से कि बच्चों को अगर मैं गज़ल पढ़ाता हूँ तो गज़ल के अंदर वो अफसाने की बातें ले आते हैं, या अफसाना पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर वो ड्रामे की बातों को लेकर आ जाते हैं, और ये सब कुछ उन्हें मसनूई ज़हानत के ज़रिए मिल रहा है। तो बच्चे खुद ही कन्फ्यूज़ हैं और वो किसी भी एक नतीजे पर सही ढंग से नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो पहले तो ज़रिया हुआ करता था तालीम देने का और बच्चों की तरबियत करने का, लेकिन अब वो एक रहनुमा के तौर पर खुद भी सीखे, उन्हें भी सिखाए और तजुर्बे के ज़रिए हम आगे बढ़ें, मुशाहदे के ज़रिए हम आगे बढ़ें। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी यही कहा है कि मुशाहदा एक उस्ताद के लिए बेनतहा अशद ज़रूरी है, और मुशाहदे का फ़ायदा उठाकर ही उस्ताद क्लासरूम के अंदर, कमरा जमात के अंदर या फिर आम जिंदगी के अंदर एक अच्छे तालिब इल्म की तरबियत कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है, उसे समझा सकता है, उसे सिखा सकता है, और सही और गलत का फैसला क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और उसे किस तरीके से नापा जाए, इसकी भी तमीज़ वो अपने स्टूडेंट को या तलबा को सिखा सकता है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर खालिद अखलाक साहब, हम अक्सर इल्म और मालूमात को एक ही समझ लेते हैं, आप तकनीकी और पेशा वाराना तालीम से वाबस्ता हैं, तो आपके ख्याल में मालूमात और इल्म में बुनियादी फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को समझाने में उस्ताद का क्या किरदार है?
3: बेशक आपका सवाल बहुत मौजू है। मालूमात और इल्म में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली मालूमात का मतलब यह है कि शेयर इंफॉर्मेशन
1: जी,
3: एक फैक्ट, एक सच्चाई। इल्म उस सच्चाई के अंदर रूह पैदा करती है, इल्म उस सच्चाई के अंदर हिकमत पैदा करती है, विजडम पैदा करती है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इस पैमाने पर उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और तौलते हैं, तब जाके वो इल्म का शक्ल इख्तियार करती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुमाया फ़र्क

0: पड़ जाते हैं, उनको भी आजकल इतने ज़्यादा ज़राए मौजूद हैं कि उन्हें तलाश करनी पड़ती है क्या ये मुस्तनद है या नहीं है। अक्सर मेरे सामने इस तरह के मामले आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि बच्चे कुछ भी, जैसे मैं सवाल उन्हें देता हूँ या असाइनमेंट देता हूँ, तो उसके जवाब वो लेकर आते हैं जिसका रेलिवेंस ही नहीं होता, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता सवाल के साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब मैं उनसे पता करता हूँ कि ये सोर्सेज आपने कहाँ से लिए, तो बताते हुए घबराते हैं, शर्माते हैं। और अभी भी यानी इतना खुलापन, इतनी सारी जगहों से चीज़ों को उठाने के बाद मस्नूई ज़हानत के ज़रिए या दीगर इंटरनेट पर मौजूद मवाद को उठाते हुए वो हिचकिचाते हैं ये बताते हुए कि हमने ये सब चीज़ें वहाँ से ली हैं। तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि देखो, किताब से अगर पढ़ोगे तो जहन नशीन होगा, और करके सीखने में ही फ़ायदा है।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, करके सीखना और फिर उसे करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी इस तरीके से काम करेगा वो एक अच्छा उस्ताद भी बनेगा, अच्छा तालिब इल्म भी बनेगा, और सोसाइटी को भी कुछ बेहतर देगा।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कहा।
0: जहाँ तक बात हो रही है कि नॉलेज क्या है और इल्म क्या है, तो इनमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। देखिए, नॉलेज जो होती है वो इधर उधर से हासिल हो जाती है। नॉलेज का मतलब है जानकारी
1: बिल्कुल।
0: या मालूमात। मालूमात कोई भी दे सकता है, और उसके पास वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन इल्म तो मेहनत, मशक्क़त, तजुर्बा, मुशाहिदा, लिख कर, पढ़ कर, बोल कर और उसकी तलाश में सरगर्दा होकर
1: बिल्कुल।
0: हासिल किया जाता है। इल्म बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, मालूमात तो यूं ही मिल जाती है, और आजकल तो मालूमात का ढेर है मार्केट के अंदर। ये मालूमात जो है, ये बच्चों को उनके कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ या दूसरी सिमतों में लगा रही है। वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, ये भी
1: बिल्कुल
0: देखता है, वो भी देखता है, लेकिन किसी एक चीज़ पर वो खास
1: बिल्कुल
0: पकड़ नहीं बना पाता।
1: सही कहा।
0: हमें
1: मैं
0: क्लास रूम टीचिंग के अंदर, कमराए जमात के अंदर जब हम पढ़ाएं बच्चों को, तो इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा जहन और तवज्जो मरकूज होनी चाहिए कि हम बच्चे को यहाँ पर क्या सिखाएं और कैसे सिखाएं, और
1: बिल्कुल
0: फिर इसका अमली तौर पर वो क्या असर कबूल करता है। और फिर
1: यही
0: जब
1: देखने वाली
0: खुद
1: बात होती है।
0: तैयार होता है, यानी जब वो खुद आगे को चलकर उस्ताद बने या एडमिनिस्ट्रेटर बने
1: जी जी
0: या
1: बिल्कुल
0: मुलाजमत के पेशे में जाए या दुकान लेकर बैठे, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है या पेश कर पाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही फरमाया आपने। सामिन कराम, हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे पास जो मेहमान आयान कराम हैं उसमें जो प्रोफेसर काजिम साहब हैं वो मेरे और डॉक्टर नदीम साहब के उस्ताद हैं, और खालिद अखलाक साहब भी हमारी उम्र के ही हैं। तो यानी यहाँ पे दो नस्ल के उस्ताद बैठे हुए हैं, एक हमारी और एक हमारे उस्ताद भी बैठे हुए हैं। और मैं ये यकीन करता हूँ कि ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और आप इससे महसूस भी हो रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे होंगे। तो खालिद साहब, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं जनाब, के आज तलबा के सामने मालूमात के हज़ारों दरवाजे हैं, मगर मसला ये है कि वो किस दरवाजे से दाखिल हों और किस रास्ते पर एतमाद करें। आप ये बताएं कि क्या आने वाले वक्त में उस्ताद का सबसे अहम किरदार इल्म देने वाले से ज़्यादा इल्म तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाले का होगा?
2: जहाँ तक उस्ताद के किरदार का सवाल है, ये एक उस्ताद के लिए भी एक चैलेंज है कि उन मालूमात को एक्सप्लोर करे और उसको वेरीफाई करे। तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के बजाय इन्फॉर्मेशन वेरीफायर। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन तलबा को, बजाय इसके कि वो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम
1: बिल्कुल
2: इस चीज़ के लिए उनको माइल करें कि वो इन्फॉर्मेशन को
1: वेरीफाई।
2: वेरीफाई कर सकें,
1: बिल्कुल
2: तो ये एक बहुत बड़ा नुमाया कारनामा होगा उस्ताद की तरफ से,
1: जी,
2: और
1: और जाहिर सी बात है वेरीफाई करने के लिए उस्ताद के पास ही आना
2: उस्ताद के पास ही
1: होगा।
2: आना
1: जी
2: होगा। दूसरी बात यह है कि अब से पहले
1: जी
2: कुछ हद तक क्लासरूम में जो उस्ताद पढ़ाते थे वो वन वे कम्युनिकेशन से काम
1: जी
2: चल जाता था,
1: बिल्कुल
2: लेकिन अब दौर जो है वो बाहमी मुज़ाकरात का है। वन
1: बिल्कुल
2: वे
1: है,
2: कम्युनिकेशन से आप क्लास में उस्ताद जो
1: नहीं
2: है वो नहीं पढ़ा
1: पढ़ा
2: सकते।
1: सकते।
2: अब उनको अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा,
1: जी
2: अपने स्टूडेंट्स को उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करनी होगी कि वो सवाल करें।
1: बिल्कुल
2: और कोई भी सोसाइटी, कोई भी तहजीब उस वक्त तक कामयाबी के राह पे नहीं चल पाएगी या तरक्की नहीं कर पाएगी
1: जी
2: जब तक वो सवाल करना
1: नहीं सीखती।
2: नहीं सीखे।
1: बिल्कुल सही
2: तो
1: कहा।
2: जब वो सवाल करेंगे तो नई सोच, नई बेदारी उसमें पैदा होती है। तो यहाँ पे उस्ताद का रोल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: दूसरी बात, अब इन सब चीज़ों के लिए उस्ताद को भी तो अपडेट होना
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: पड़ेगा।
1: होना पड़ेगा
2: तो उस्ताद के लिए भी ये ज़रूरी है कि आज के जो तकाजे हैं
1: जी।
2: उन तकाजों के बुनियाद पे अपने आप को वो अपडेट करे और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक दोस्त, एक फिलोसफर, एक गाइड की तरह
1: उनके साथ रहें।
2: उनके साथ
1: बिल्कुल
2: रहे और उनके साथ मिलजुल कर वो काम करे। जैसा कि विलियम आर्थर वाट ने कहा, मीडियोकर टीचर टेल्स,
1: जी
2: गुड टीचर एक्सप्लेन्स, सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स
1: जी
2: एंड ग्रेट टीचर

0: करने के लिए
1: जी
0: आप उसको क्या फीड कर रहे हैं,
1: जी
0: तो उस तरह से ही वो देगा। तो इसलिए उस्ताद जो है,
1: जी
0: उस्ताद की जिम्मेदारी बड़ी है और उस्ताद की कमी हमेशा रहेगी और उस्ताद की जरूरत हमेशा रहेगी। और उस्ताद जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो दर्श दिया था, हम
1: जी
0: उनकी याद में एक तरह से उनको याद कर रहे हैं, और अभी मैं 5 तारीख को उनके उनके हवाले से मतलब
1: योम
0: हम सब लोग
1: असातिज़ा
0: यौम असातिज़ा मनाते हैं।
1: जी
0: तो वो उस्ताद, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो उसूल दिए थे, जो दर्श दिए थे,
1: जी
0: वो उस जमाने में AI नहीं था, उस जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी,
1: जी
0: लेकिन क्या वो बेमानी हो गए हैं आज?
1: नहीं
0: आज ज्यादा मानवियत है उसकी,
1: ज्यादा
0: आज वो ज्यादा
1: मानवीय
0: जरूरत है हमें उन उसूलों की, उन
1: जी
0: तदरीस के तरीकों की। ठीक है, AI बोर्ड आ गया आपके पास, लेकिन उसको जब फीड करेंगे, उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं आएगा, तो कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे? तो जितनी वो है कि जैसे किताबें हैं, वो पुराने उसूल हैं, पुराने लोग हैं और पुराने असातिज़ा हैं, उनके सारे उसूल आज भी ज्यादा मीनिंगफुल हैं। यानी
1: बिल्कुल
0: जब आप बेहरारवी के शिकार होते हैं, तब तहजीब की ज्यादा जरूरत पेश आती है।
1: बिल्कुल। शुक्रिया आपका। चूंकि वक्त इजाज़त नहीं देता, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे, बहुत सारे सवालात हमारे सामईन के जहन में भी बने होंगे, उभरे होंगे, उनके जवाबात हम नहीं दे पाए। चलिए, हम आपसे वादा करते हैं सामईन इकराम कि अगले प्रोग्राम में हम आपके उन सवालों के भी जवाब देंगे जिनके लिए आप हमें लिखते हैं, जिनके लिए हमें पूछते हैं कि हम अपने माहिरीन से उन सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएँ, तो उसकी हम भरपाई करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन अब चलते चलते चाहते हैं कि अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम से एक आखिर में कि आज के दौर में आप तालिबे इल्म को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
2: आखिर में मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि AI एजुकेशन के दौर में एक रिवोल्यूशनरी काम कर रहा है,
1: जी
2: तो इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं।
1: जी
2: तो जो भी स्टूडेंट
1: जी
2: इसको यूज़ करके, जो भी तालिबे इल्म इसको इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, वो एक उस्ताद चुने जो उनको उस इन्फॉर्मेशन में तमीज़ करना सिखाए कि क्या ये सही है
1: और क्या
2: या
1: गलत
2: ये
1: है।
2: गलत है।
1: शुक्रिया आपका।
2: और इसके साथ ही हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर रहे हैं वो इथिकली वैलिड हो,
1: बिल्कुल,
2: अखलाकियात के बुनियाद पे
1: वो
2: वो
1: बिल्कुल
2: सही
1: सही
2: हो।
1: हो। जी शुक्रिया। नदीम साहब, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे?
3: तलबा को भी सीखना चाहिए
1: जी
3: और सही और गलत की तमीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा असातिज़ा का भी ये फ़र्ज़ है कि वो तकनीक के साथ और ज़माने के साथ आगे बढ़ें और उन सब चीज़ों को सीखें। आम तौर पर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो रिटायरमेंट के नज़दीक असातिज़ा हैं हमारे, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं या उन्हें वो चला नहीं पाते हैं, तो उन्हें ख़ुद को भी तैयार रखना चाहिए। और टीचर का तो काम ही है कि उसे वक्तन फ़वक्तन अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा उस्ताद बन सकता है।
1: जी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर काजिम साहब, आप उस्ताद के उस्ताद हैं और आपने वो ज़माना भी देखा है जिन असाज़ा के बारे में बात की जाती है, जिन असाज़ा के नक्शे कदम पर लोग चलना चाहते हैं, आप भी उनके मिसाल देते हैं, आपने उनको देखा है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: तो मेरा तो यही मशवरा है कि हम असातिज़ा को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है
1: जी
0: और तालिबे इल्म को, हर तालिबे इल्म की अपनी ज़रूरत है, तो उसकी मुनासबत से पूरी क्लास 80 की है तो या 50 की है, सबको एक ना दें बल्कि आइडेंटिफाई करें। और अब तो ग्रुप एजुकेशन पर भी ये
1: जी
0: किया
1: जी
0: गया
1: जी
0: है कि क्लास में भी मॉनिटर के तौर पर 10-10 बच्चों के ग्रुप बना
1: जी
0: करके
1: जी
0: उस्ताद, एक एक उस्ताद को दिया गया है
1: जी
0: कि ये 10 बच्चों की तरबियत आप करेंगे,
1: जी जी
0: तो उन 10 में आप आइडेंटिफाई करें, 2 ग्रुप हो जाएगा, 3 ग्रुप हो जाएगा,
1: जी
0: उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप उनकी तरबियत करें, उनको सब बता दें कि ये चीज़ें आपके काम की है, ये आपके काम की नहीं है, या यही पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वो जरूर इससे हमारी नस्ल जो आगे बढ़ेगी, नस्ल आगे बढ़ेगी,
1: जी
0: न तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारी कौम आगे बढ़ेगी और हम तरह मुल्क दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में जल्द से जल्द शामिल हो जाएंगे।
1: जी शुक्रिया आपका। तो सामीन इकराम, आज की गुफ्तगू से शायद एक बात पूरी तरह वाज़ह हो जाती है कि मालूमात उस्ताद को ख़त्म नहीं करती बल्कि उस्ताद के किरदार को तब्दील करती है। कल उस्ताद मालूमात का अमीन था, आज उस्ताद मालूमात का मुंतखब कुनंदा है। कल वो जवाब देता था, आज वो सवाल करना सिखाता है। कल वो किताब पढ़ाता था, आज वो तालिबे इल्म को ये सिखाता है कि किताब, इंटरनेट और मस्नूई ज़हानत के बेशुमार जवाबों में से दुरुस्त जवाब कैसे तलाश किया जाए। और शायद मुस्तकबिल का सबसे अच्छा उस्ताद वो होगा जो ये कहने में शर्मिंदगी महसूस ना करे कि मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद का अजीम होना इस बात में नहीं कि वो सब कुछ जानता है बल्कि इसमें है कि वो सीखने का शौक भी नहीं छोड़ता। AI मालूमात दे सकती है लेकिन उस्ताद सवाल को सिमत दे सकता है, इंटरनेट जवाब दे सकता है लेकिन उस्ताद जवाब کوئی معنویت سمجھا سکتا ہے. مشین لکھ سکتی ہے لیکن استاد طالب علم کے

अंदर सोचने, महसूस करने और इंसान बनने की सलाहियत पैदा कर सकता है। और शायद यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के इस बढ़ रफ्तार ज़माने में भी उस्ताद की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे मौजूद मेहमान आने कराम जनाब डॉक्टर खालिद अखलाक साहब, डॉक्टर नदीम साहब और प्रोफेसर काजिम साहब, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुबाहसे में आए और इसमें शरीक हुए और इतनी मालूमात बातें की। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश इंतज़ार सैफ़ी की थी। तो सामईन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मौजूआत और मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त।

听众提示：以及文件的外部地位。听众朋友们，接下来我们播送乌迪奈拉言唱的一首歌曲。

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

听众朋友们，接下来我们播送 Kishore Kumar 和 Asha Bhosle 唱的一首歌曲。

0: 听众朋友们，现在我们播送中文讲话。
1: 印度德里广播电台，下面播送一篇特写，题目是拉达克里什嫩博士1888到1975年。1888年9月5日，拉达

0: खिलाड़ी
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत और हर संघर्ष के साथ मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संचित जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। आज देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश में उत्साह और उमंग

दोनों का माहौल है और खेल जगत भी आज कई बड़ी खबरों और रोमांचक मुकाबलों के साथ तैयार है। आज के खेल खिलाड़ी में विमेन्स T20 एशिया कप में भारत और हांगकांग मुकाबले से लेकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन और US ओपन 2026 तक की बड़ी खबरें शामिल होंगी। PSA लंदन क्लासिक, सुब्रतो कप अंडर 15 बॉयज और AFC अंडर 20 एशियन क्वालिफायर से लेकर इंडियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक युवा और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों की हलचल पर रहेगी हमारी खास नजर। वहीं डायमंड लीग फाइनल्स, एशियन गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम और WTT कंटेंडर अल्माटी से जुड़े अहम अपडेट्स भी होंगे आज इस खेल खिलाड़ी का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विमेन्स T20 एशिया कप भारत और हांगकांग के बीच कल खेले गए मुकाबले से।

0: एक तरफ रिकॉर्ड बनते रहे तो दूसरी तरफ हांगकांग के विकेट लगातार गिरते रहे और पूरे मुकाबले में भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आया। बल्ले से भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया तो गेंदबाजों ने हांगकांग की पारी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा रहा 137 रन की शानदार जीत और सेमीफाइनल में भारत की जगह पक्की। महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम का शानदार अभियान जारी है। हांगकांग के खिलाफ ये मुकाबला भारत के लिए अहम था क्योंकि जीत के साथ टीम के पास सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने का मौका था। भारतीय खिलाड़ियों ने इस मौके को सिर्फ भुनाया ही नहीं बल्कि एक तरफा अंदाज में मुकाबला अपने नाम करते हुए अपनी दावेदारी और भी मजबूत कर दी। दुबई में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 16.2 ओवर में सिर्फ 56 रन पर सिमट गई। भारत की पारी की शुरुआत से ही इरादे साफ थे, टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाली स्मृति मंधाना ने। मंधाना ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और हांगकांग के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उन्होंने महज 64 गेंदों में 124 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 14 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। मंधाना की बल्लेबाजी में सिर्फ तेजी ही नहीं बल्कि पूरे मैच पर उनकी पकड़ दिखाई दी। एक के बाद एक बाउंड्री लगाते हुए उन्होंने भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इसी दौरान अपने T20 इंटरनेशनल करियर का एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। ये शतक मंधाना की शानदार पारी का सबसे खास पल रहा। रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने के बाद अब सुनते हैं स्मृति मंधाना ने अपने प्रदर्शन और टीम की इस बड़ी जीत पर क्या कहा।
1: Yeah, I mean, till I was batting, I didn't know like what record because I didn't know what's the exact runs or all of that. But looking back, a very good day for Indian cricket, I would say. Of course, Mitali has been such a legend and a role model, and I mean, go past her in the tally of runs is I definitely never imagined to do that. But happy that you know there are Indians at the top too. Going past the international record of the centuries, 18 is a good number to go past. Firstly, I will say that. But again, I mean, two of the legends of women's cricket, Meg Lanning and Mitali Raj, I mean, genuinely, these are the two people who have grown up watching a lot of my cricket, tried to take a lot of things from them as batters. So really happy that I could go past them in whatever ways. But yeah, again, it's just a start, I would say. Yeah, I mean, it's not, I wouldn't say that it's easy conditions to bat out there. We know it can be a little tricky. And Dubai, again, with the Dubai heat and the humidity, it can get a little tougher. But I was lucky I got few fours and sixes and I didn't have to run a lot of twos in on the field. But yeah, definitely, I would say a little testing conditions to be locking, batting for a long time.
0: मंधाना की इस पारी के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी उनके नाम जुड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके रनों की संख्या बढ़कर 10,889 हो गई और इस आंकड़े के साथ उन्होंने मिताली राज को भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मंधाना के शतकों की संख्या भी बढ़कर 18 हो गई है। यानी एक शानदार पारी ने भारत को बड़ा स्कोर देने के साथ साथ मंधाना के रिकॉर्ड बुक में कई नई उपलब्धियां भी जोड़ दी। T20 इंटरनेशनल में भी मंधाना ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की। उनके नाम अब 95 छक्के हो गए हैं। इस आंकड़े के साथ उन्होंने

हरमनप्रीत कौर के 89 छक्कों को पीछे छोड़ दिया और भारत की महिला क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना की शानदार पारी ने भारत को 193 रन तक पहुंचाया, लेकिन मुकाबला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की और उन्होंने भी बल्लेबाजों के बनाए दबाव को पूरी तरह कायम रखा। हांगकांग की पारी की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने रन बनाने के मौके बेहद कम कर दिए, लगातार विकेट गिरते गए और हांगकांग की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बिखर गई। कोई भी साझेदारी बड़ी नहीं हो सकी और पूरी टीम 56 रन पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा सबसे सफल रहीं और उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं नंदिनी शर्मा, श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 2-2 विकेट लेकर हांगकांग की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। भारत की यह 137 रन की जीत सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं रही बल्कि T20 इंटरनेशनल में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत भी बन गई। इससे पहले भारत ने 2018 में मलेशिया को 124 रन से हराया था। इस मुकाबले में श्रीचरणी के लिए भी एक खास उपलब्धि सामने आई। साल 2026 उनकी T20 इंटरनेशनल विकेटों की संख्या 31 हो गई है। वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। अब श्रीचरणी के सामने अगला बड़ा आंकड़ा है पूनम यादव के रिकॉर्ड का। पूनम यादव के नाम 35 विकेट हैं और श्रीचरणी इस रिकॉर्ड से सिर्फ 4 विकेट दूर हैं। यानी आने वाले मुकाबलों में उनके पास इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका भी रहेगा। हांगकांग के खिलाफ मिली इस बड़ी जीत के साथ भारत महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। लेकिन टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 सितंबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है। सेमीफाइनल में जगह पहले ही पक्की हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए अहम रहेगा। इस मैच में टीम अपनी लय को बरकरार रखने के साथ साथ बड़े मुकाबलों से पहले अपनी तैयारियों को भी परखना चाहेगी। हांगकांग के खिलाफ भारत ने जिस तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अपना दबदबा कायम रखा, उसने टीम के प्रदर्शन की पूरी तस्वीर सामने रख दी। तो क्या यही लय भारत को सेमीफाइनल से फाइनल और फिर खिताब तक पहुंचाएगी? एशिया कप 2026 की ट्रॉफी पर कौन अपना नाम लिखेगा, इसका जवाब मिलेगा आगे आने वाले मुकाबलों में।

चलिए, ये तो हुई क्रिकेट की बात, जहां भारत के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत ने हांगकांग के ऊपर जीत हासिल करी। अब आपको ले चलते हैं चाइना, जहां पे चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है।

चलिए अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां शेंजिन गुआंगडोंग चाइना में खेले जा रहे चाइना मास्टर्स 2026 में बहुत रोमांचक मैच खेले गए। मेन सिंगल्स की बात करें तो आज सुबह दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। फ्रांस के क्रिस्टो पॉपोव जो कि नंबर दो सीड है, उन्होंने जापान के कोडाई नारोका को 21-10, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करी। वही हांगकांग के ली चुंग यू ने भारत के किदाम्बी श्रीकांत को 21-16, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करी। बाकी दो मैच आज शाम को खेले जाएंगे, जहां डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन थाईलैंड के कुनलावुट विटरसान के साथ खेलेंगे। वही दूसरा मैच चाइना के वेंग हॉन्ग यांग हांगकांग के जेसन गोनावन के साथ खेलेंगे। वेमेन सिंगल्स की बात करें तो आज चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। कोरिया की नंबर वन सीड एन से यंग ने कोरिया की ही किम गा इन को 21-11, 21-10 से हराया। वही जापान की नंबर थ्री सीड अकाने यामागुची ने सुपिंदा केटेथोंग को 21-18, 21-16 से हराया। जापान की टमोका मिजियाकी ने कलोयाना नेलबंटोवा को 21-12, 21-11 से हराया। वही चाइना की वैंग जी यी ने जापान की नाजोमी ओकुहारा को 21-6, 21-10 से हराया। एक और रोमांचक मैच खेला जाएगा मेंस डबल्स में, जहां भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो कि नंबर चार सीड है, डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स रास्मुसन के साथ खेलेंगे। ये मैच आज शाम को खेला जाएगा।

0: मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि सात्विक और चिराग का मैच अभी चल रहा है और भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 21-13 से जीत लिया है। अभी दूसरा सेट चल रहा है, तो देखते हैं भारत कैसा करेगा। अब चलते हैं लंदन, आपको स्क्वॉश की तरफ।
1: लंदन स्क्वॉश क्लासिक में भारत की युवा स्टार अनाहत सिंह ने अपने प्रदर्शन के साथ एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। अलेक्जेंड्रा पैलेस में खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में 18 साल की अनाहत वर्ल्ड नंबर 8 नेले गिलेस को हराकर गोल्ड लेवल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ये मुकाबला PSA स्क्वॉश टूर के गोल्ड लेवल इवेंट का हिस्सा है और अनाहत के सामने थी टूर्नामेंट की 8वीं सीड नेले गिलेस। पिछले साल लंदन स्क्वॉश क्लासिक की फाइनलिस्ट रह चुकी गिलेस के खिलाफ अनाहत के लिए चुनौती बड़ी थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ लिया। पहला गेम बेहद करीबी रहा और अनाहत ने 3-11 से बढ़त हासिल की। गिलेस ने दूसरे गेम में वापसी करते हुए 11-4 से स्कोर बराबर किया। निर्णायक गेम में अनाहत ने फिर से नियंत्रण हासिल किया। बैक कोर्ट में गिलेस को बनाए रखने और फ्रंट कॉर्नर में सटीक शॉट्स लगाने की रणनीति काम आई और अनाहत ने तीसरे गेम में 11-8 से जीत दर्ज कर ली। इस तरह 39 मिनट चले मुकाबले में अनाहत ने 3-11, 4-11 और 11-8 से जीत दर्ज की। ये PSA स्क्वॉश टूर के गोल्ड लेवल टूर्नामेंट में उनका पहला क्वार्टर फाइनल है। साथ ही वो 2021 में जोशना चिन्नप्पा के बाद गोल्ड लेवल इवेंट के अंतिम 8 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अनाहत के लिए उपलब्धि उनके शानदार वर्ष में एक और बड़ी कामयाबी है। जुलाई में उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा था और अब सीनियर सर्किट में भी दुनिया की शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं।
2: It's my first time playing on this court. I think it's the same one as the British Open as well. And I watched it and I didn't do too well in that tournament last, you know, a couple of months back. But I was really excited to get to play on this court. And I'm happy that I got a chance to play here and against, you know, such a great player as well. Yeah, I mean, that was always been my dream to win that event. But I think it's just, you know, one tournament ahead of, you know, a lot more that I really want to win on the PSA Tour. And I think just that's really helped me, you know, get a bit more confidence to play events like this and coming into the new season as well. Yeah, I mean, of course, I trained with Siva a lot back in Prague. So, I mean, the dynamic is very different and in comparison to playing any other opponent. But of course, just, you know, go back, recover as well as I can. And of course, just watch a few of her matches and try to regroup as well as possible, practice and, you know, just like any other match and just come in and do the best I possibly can.
1: अब लंदन में अनाहत की अगली परीक्षा और भी बड़ी है। आज यानी 4 सितंबर को शाम 6:45 पर क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मलेशिया की 3 नंबर सीट सवांगसरी सुब्रमण्यम से होगा। सवांगसरी ने दूसरे दौर में इजिप्ट की नार्डिन गरास को सिर्फ 17 मिनट में 11-5 और 11-5 से हराया था। सवांगसरी इस टूर्नामेंट की पूर्व चैंपियन भी हैं। उन्होंने 2024 में लंदन स्क्वॉश क्लासिक का खिताब जीता था। उस अभियान में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 हानिया एल हमामी, 8 बार की वर्ल्ड चैंपियन नूर एल शेरबिनी और नेले गिलेस जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को हराया था। ऐसे में अनाहत के सामने अब एक ऐसी खिलाड़ी की चुनौती है जो इस टूर्नामेंट के मंच और दबाव दोनों से अच्छी तरह परिचित हैं। अनाहत और सेवांगसरी की भिड़ंत आने वाले एशियन गेम्स के लिहाज से भी दिलचस्प होगी। दोनों इसी महीने एशियन गेम्स में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगी और वहां होने वाली प्रतिस्पर्धा लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में स्क्वॉश की शुरुआत के लिहाज से भी बेहद अहम रहेगी। और श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां चल रहा है US ओपन 2026।
0: लॉन टेनिस की चर्चा करें तो न्यूयॉर्क के बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में US ओपन 2026 खेला जा रहा है। ये प्रतियोगिता 30 अगस्त को शुरू हुई थी और ये 13 सितंबर तक चलेगी। देश विदेश के मशहूर लॉन टेनिस खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा

0: तो श्रोताओ, आप सुन रहे थे ये कृष्ण भजन, और कलाकार थी राजबाला।
1: भाई देखिए, अगर आज के दिन की बात करें तो आज दादा भाई नौरोजी की जयंती है, जो कि 4 सितंबर को हर साल मनाई जाती है, और इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय इन्होंने ये बात बताई थी कि किस तरह से ब्रिटिश नीतियों के द्वारा भारत के धन को ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति लगातार कम होती जा रही थी और गरीबी का दौर बढ़ता जा रहा था।
0: बिल्कुल, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि हमारे दादा नौरोजी भाई का जयंती भी है, और उनको भारतीय सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रवादी आंदोलन में उनके लंबे और प्रभावशाली योगदान के कारण लोगों ने उन्हें भारत के महान बुजुर्ग का नाम भी दिया था। वे ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रारंभिक सबसे पहले वाले भारतीय नेताओं में से एक थे। उनके आर्थिक तर्कों पे, जैसे कि बात की, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप में कई चीज़ों पे उन्होंने मार्गदर्शन दिया।
1: बिल्कुल। और देखिए, अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो जहाँ कृष्ण लीलाओं का हम जिक्र करते हैं, वहीं कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है उसकी भी मिसाल दी जाती है, क्योंकि कृष्ण तो राजा थे लेकिन सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने अपने दोस्त को हमेशा वही मान सम्मान दिया, प्रेम दिया, क्योंकि जो दोस्ती होती है ना, वो ऐसा बंधन है जो कि प्रेम से जुड़ा रहता है। तो सुनते हैं ये कृष्ण और सुदामा की रागनी, और कलाकार होंगे जयवीर सिंह।

0: तो शो तो आप सुन रहे थे कलाकार जयवीर सिंह से कृष्ण सुदामा की ये बहुत ही खूबसूरत सा जो अंदर बंधन था, प्रीत से बंधा था, जहाँ पे कोई कोई एक दूसरे से कोई चाह नहीं थी, सिर्फ प्यार का बंधन था। तो इसी के साथ ही आगे एक और हम सुनाने वाले हैं माखन चोर नंद किशोर की मीठी बांसुरी से बांधी जो कान्हा जी ने सबके साथ प्रीत की डोर, इसी को सुनते हैं हम एक और भजन राधा कृष्ण की।
1: और कलाकार रहेंगे जयप्रकाश शर्मा।

वीरे से झोटा देओ गिरधारी जी, धीरे से झोटा दे।

0: हमें तो तुम प्यार से प्यारी जी, हमें तो तुम प्राण से प्यारी जी, हिंडोरा कुंज बन डारो जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी।
1: तो भाइयों, जय प्रकाश शर्मा के गाए हुए इस कृष्ण भजन के साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
2: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुने हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्यक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कभी कभी व्रत तो सब लोग करते हैं और व्रत करना ज़रूरी भी है। तो व्रत करते हैं ना, जब हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ही होती है कि इसमें हम फलों का सेवन करते हैं जिसमें कि फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो व्रत के बहाने ही सही हम फल, ताज़े

0: खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, प्रसाद के रूप में हम पंजीरी खाते हैं जिसमें कि तरह तरह के मेवा पड़ी रहती हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ दूध के उत्पाद हैं, चाहे वो दही हो, ताज़ा दूध हो या देसी घी हो, सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी भी हैं क्योंकि प्रोटीन की मात्रा दूध से बने उत्पादों में होती है। तो एक तरफ व्रत भी हमारा हो जाता है और साथ साथ जब हम प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो उससे हमें पोषण भी खूब मिलता है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम त्योहारों पे, अवसरों पे, पर्व पे मतलब सब कुछ बनाते हैं जो हमारे मन की इच्छाएं होती हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भूल जाते हैं कि हमारे लिए कहीं वो हमें नुकसान ना दे दे, वो हमारे लिए आनंद का समय ना हो, कि कहीं मुश्किल वाला प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हम ये सोचें कि हमें हमें उस दिन वो खाना है जिससे फल, जैसे फल खाएं तो उससे आपको पौष्टिकता मिलती है, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको मतलब हर तरीके के त्यौहार वाले दिन हर तरीके की चीज़, जैसे दूध से बनी चीज़ें खाएंगे तो उससे आपको प्रोटीन भी मिलता है ना।
0: बिल्कुल, और कृषि जगत जो कार्यक्रम है उसमें हम किसान भाइयों के लिए खास जानकारी भी लेकर आते हैं। और अगर बागवानी की बात करें तो बागवानी से जुड़े जानकारी आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं और उसका विषय है इस महीने में बागवानी में होने वाले कार्य। इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो लेते हैं ये जानकारी।
2: भाइयों नमस्कार। जो किसान भाई अनाज वाली फसलें उगाते हैं निश्चित तौर पे वो कृषि कार्य करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो सब्जी है, फूल है, फल है, बागवानी फसलें उगाते हैं, तो उनको भी समय समय पर कृषि कार्य करने पड़ते हैं जिससे इन फसलों से वो अधिक उत्पादन ले सकें। और इस माह में कौन कौन से बागवानी कार्य किए जाएं इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, इस समय की जो सब्जियां हैं लगी हुई हैं उनके बारे में, और जो हमारे किसान भाई आगे लगाना चाहते हैं तो उसके नर्सरी प्रबंधन के बारे में।
3: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि किसान भाई जो भी खेती करते हैं, और खेती से पहले किसान भाई को अपने आसपास के किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर रखें कि कौन सी बीज ले, कौन सा प्रमाणित सोर्स है, इन सारी चीज़ों की, आगे बीजों का हम लगाने का तरीका क्या है, आगे हम कैसे उसकी देखभाल करते हैं, इसके लिए विशेष ध्यान दें। क्योंकि किसान भाई लगाने के बाद अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी आती है तो फसलों का नुकसान भी होता है, उपज के पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जरूरी होता है कि किसान भाई को ध्यान देना जरूरी है, एक समय का जरूर ख्याल रखें। और इस समय जैसे सितंबर का माह का महीना चल रहा है, कुछ सब्जियां जो बरसात वाली सब्जियां हैं जो कंटिन्यू चली आ रही है, जैसे हम बेल वाली सब्जियां मुख्य तौर पे है, तो बरसात के मौसम में उन सब्जियों को आप मचान सिस्टम पर लगाएंगे तो एक तो बीमारी भी कम आएगी, साथ ही साथ उसका फल जो होगा दाग भी नहीं रहेगा और स्वस्थ होगा। अभी आगे समय है, जैसे हम कुछ किसान भाई अगेती फूलगोभी की खेती करते हैं तो उनकी पौधे अगर तैयार हो गई है तो उसको लगाएं, और ये ध्यान रखें उसको मेड़ों पे लगाएं क्योंकि अभी भी बरसात की संभावना रहेगी इस पूरे महीने में, क्योंकि प्लेन में लगाएंगे तो जल भराव की समस्या होगी तो फसल खराब होने की संभावना रहती है। तो अगेती अगर पौधे तैयार है तो उसको अच्छे तरीके से मेड़ बना के उसकी रोपाई करें। साथ ही साथ जो सितंबर माह है ये मुख्य रूप से जो अक्टूबर से रबी मौसम की शुरुआत होती है उसकी तैयारी करते हैं। तो जैसे रबी मौसम में जितनी भी सब्जियां लगाई जाएगी, जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य तरह से फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, गांठ गोभी है, इनके किसान भाई इस मौसम में नर्सरी की तैयारी करें। और नर्सरी की तैयारी करने के लिए किसान भाई को ऊंची उठी हुई बेड, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, क्योंकि बीज बहुत कॉस्टली होता है, जितने भी आजकल सब्जियां लगाई जा रही है ये देखा जा रहा है कि जो भी सब्जियां हैं वो है जो बहुत कॉस्टली बीज आ रहे हैं, उसको अगर हम परंपरागत तरीके से डालते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो किसान भाई को ध्यान देना होगा उन बीजों का महत्व देखते हुए, उसकी कीमत को देखते हुए ऊंची उठी हुई बेड बना के, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर रखते हैं और लंबाई जो है 15 मीटर रखते हैं, और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर का रखें, और बेड के ऊपर जो हम लाइन बनाते हैं वो जो है 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाइन बने, और उन लाइन में बीज को आप सावधानी से डालें दूरी का ध्यान रखते हुए, फिर उसको आपने अच्छी तरीके से ढक के, और ये ध्यान दे कि बीज लगाने से पूर्व किसान भाई बीज का उपचार और भूमि का उपचार अवश्य करें। तो हमने इसका विशेष ध्यान देना है और उसकी रख रखाव करते हुए ये लगभग 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, तो आगे चल के हम उसकी रुपाई कर देते हैं। हम बात करते हैं जड़ वाली सब्जियों की, जो कि जड़ वाली सब्जियां अगेती

0: कुछ किस्में हैं जिसको किसान भाई, जैसे पूसा की पूसा वृष्टि वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको किसान भाई आसानी से इस माह में लगा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने लगा भी चुके हैं, क्योंकि हम अगस्त सितंबर से बात करते हैं तो इसकी टाइमिंग होती है, और ये किसान भाई लगाएंगे तो फायदा ये होगा, क्योंकि बेमौसम में अगर गाजर आएगा तो उसको कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो उसके लिए अच्छी तरीके से आप पूसा से बीज ले, और जो प्रमाणित स्रोत है वहां से बीज लेके इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा हम मूली की बात करते हैं, मूली की भी कुछ अर्ली वैरायटी है, मीनू अर्ली करके वैरायटी है, पूसा की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, उसको लेके आप लगा सकते हैं। और उसको मेड़ों पे लगाना है। आजकल किसान भाई पहले परंपरागत तरीके से करते थे कि बीज को छिड़क के और मेड़ बना देते थे, लेकिन अब तकनीकी के साथ साथ बदलाव हुआ है, और इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर चालित यंत्र आ गए हैं जो कि बीज को उसमें डाल के और बहुत अच्छे तरीके से कम बीज में, जैसे हम बात करते हैं कि अगर 1 एकड़ गाजर की बुआई करते थे या 1 एकड़ मूली की बुआई करते हैं तो उसमें बीज करीब डबल से ट्रिपल बीज लगते थे, लेकिन अब जो है बीज कम से कम में 1 से 1.5 किलो में गाजर का बुआई हो जाता है, नहीं तो ये 3 से 4 किलो लगते थे। वैसे ही मूली की हम बात करते हैं कि 4-5 किलो बीज लगते थे, लेकिन अब 2 से 3 किलो में इसकी बुआई हो जाती है। तो इसका किसान भाई जरूर ध्यान दें कि हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमें कम से कम लागत में, क्योंकि विशेषज्ञ का, किसानों का ये उद्देश्य होना है कि कम लागत लगा के हम अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा बात करेंगे कि आगे आने वाली जो सर्दियों की सब्जी में पत्तेदार सब्जी भी मुख्य रूप से सर्दियों में ही की जाती है, जैसे हम मेथी की बात करते हैं, पालक है, धनिया है, सरसों साग है, इन चीजों के भी हम किसान भाई कुछ अक्टूबर नवंबर तक जाते हैं लगाने के लिए, लेकिन कोशिश करें बीज का उपचार करके, भूमि का उपचार करते हैं और इसको देख रेख प्रॉपर केयर में करेंगे, तो अभी जो किसान भाई इन चीजों को लगाएंगे तो बाजार में जब आएगा तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि हमने किसान भाई को ध्यान देना होगा कि सभी किसान एक साथ करते हैं, जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि मार्केट में सभी किसान भाइयों का एक साथ प्रोडक्ट आता है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे किसान भाई को रेट नहीं मिलता, तो पालक है, जैसे पालक की हम बात करते हैं, मूली की बात करते हैं, तो इनकी जुताई भी कर देते हैं क्योंकि उनको लागत वापस होने की संभावना नहीं रहती। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि जो भी हम सब्जियां लगा रहे हैं इस मौसम में, अगर हम अगेती करें वैसे ही, जैसे हम मेथी लगा लेते हैं, पालक लगा लेते हैं, धनिया लगा लेते हैं, सरसों साग लगा लेंगे, तो इनको बहुत अच्छा आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और सर्दियों के मौसम की सब्जियां हैं, इस मौसम में ही हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिसकी हम बीज द्वारा सीधे बुआई करते हैं, और बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जिसकी हम पौध का तैयारी करते हैं, तो अगले माह में जो लगाई जाएगी उसकी भी तैयारी हमें इस माह में करनी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया किस तरीके से जो हमारे किसान भाई आने वाले समय में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या नर्सरी लगाना चाहते हैं उसके बारे में आपने बताया, लेकिन आगे आने वाला जो मौसम है, इस मौसम में काफी हमारे त्योहार भी पड़ते हैं, और जब त्योहार पड़ते हैं तो वहां पर फूलों की भी मांग होती है। जो हमारे फूल वाले पौधे हैं तो उनकी किसान भाई किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि समय पर जब मांग हो उस समय बेच करके अच्छा दाम कमा सकें।
0: जी, हम जो परंपरागत तरीके से लोग धान गेहूं और इसमें खेती कर रहे हैं उससे हट के, क्योंकि किसान भाई को, क्योंकि हमारा दिनों पर दिन जो है वो उसका आकार छोटा होते जा रहा है, तो हमें भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ किसान भाई जो परिनगरीय क्षेत्रों में है, जहाँ ड्रेन के माध्यम से खेती कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी किसान भाई इस फसल का लाभ उठा सकते हैं। हम बात करते हैं गेंदे की फसल की, कि जहाँ पे ड्रेन के माध्यम से सब्जियों की खेती हो रही है ऐसे जगहों पे किसान भाई को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स और रासायनिक तत्व होते हैं जो कि सीधे तौर पर मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने किसान भाइयों को इससे थोड़ा सा हटके, हम अनाज वाली फसलों में आय कम हो रही है और जहाँ पे ऐसे पानी की व्यवस्था है जहाँ से किसान भाई अगर सब्जी लगा के उसका इस्तेमाल करता है तो उसको नुकसान हो सकता है और उसका वातावरण और उसकी जमीन भी नुकसान हो रही है, तो इस दशा में किसान भाई ऐसे में बहुत ही एक अच्छा फसल है जो है, फूलों की फसल में हम बात करते हैं तो गेंदे की फसल है, और गेंदे की फसल लगाने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। जिन किसान भाइयों ने गेंदे के पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए हों तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि आगे आने वाले जो भी हमारे त्योहार होते हैं, खासकर हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं जिसमें दशहरा, दिवाली, बहुत सारे ऐसे हमारे पर्व होते हैं जिनमें इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, और उस टाइम किसान भाई को लगभग 150 से 200 रेट तक भी किलो के हिसाब से, कभी कभी तो देखा गया है कि 300 रुपए किलो तक भी गेंदे के फूल बिकती है, तो ये एक बहुत सुनहरा मौका रहता है। तो किसान भाई को हमेशा ध्यान देना होगा, हमें समय को टारगेट करना है, फसल को टारगेट करना है कि कौन से मौसम में हम कौन सी फसल लगाएंगे, उसी तरह से

जो गेंदे की फसल है ये अभी बहुत ही उत्तम समय है। और मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से उनको बताना चाहेंगे कि हम ये देखें कि लगाने के 45 से 50 दिन पे बड बनना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखें दशहरा कब है, दिवाली कब है, उसके हिसाब से उस गैप अंतराल पर एक तो हमने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, जो हमें दशहरा में लेना है उस दशहरा को टारगेट करेंगे, जो हमें दिवाली में लेना है उसको दिवाली में टारगेट करेंगे और अन्य पर्व

0: और वो है पिंचिंग का कार्य। हम पिंचिंग बोलते हैं कटाई करना। उसमें क्या होता है कि जब हम गेंदे की फसल लगाते हैं तो एक ही तना जो है सीधे बढ़ते रहता है, लेकिन अगर हम 30-40 दिन के आसपास जब बड बनने से पहले उसको 1 से 2 फीट छोड़ के पूरी कटाई कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि साइड से ब्रांचेज निकलते हैं और जिससे क्या होगा कि आपको जितना ब्रांचेज हो गया उतने बड होगी, और जब बडों की संख्या और फूलों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी नेचुरली ये होगा। एक और इसमें फायदा ये होता है, मान लीजिए बड बनना शुरू हो गया और फूल बन जाएगा और टाइम 10 दिन के बाद होगा, तो आप 10 दिन का समय जो है किसान भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने क्या करना है कि उसकी पिंचिंग कर देंगे तो ये जो बडों की संख्या है ये भी 10 से 15 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, किसान भाई को एक तो समय को भी आप टारगेट कर सकते हैं, इससे साथ ही साथ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो इसके लिए आप ख्याल रखें बीजों का ख्याल, क्योंकि उसमें क्या होता है कभी कभी देखने को मिलता है किसान भाई गेंदे लगा देते हैं लेकिन फूलों का उसमें आकार साइज रंग सब अलग अलग बनता है। तो ज्यादातर जो हमारे भारतवर्ष में गेंदे की ज्यादा डिमांड होती है वह नारंगी जो कलर होते हैं उसकी डिमांड होती है, और इसके लिए पूछा कि नारंगी वेरायटी बहुत अच्छी वेरायटी है, पंजाब गेंदा नंबर 1 की बहुत अच्छी वेरायटी है, और भी वेरायटी है, लेकिन वेरायटी किसी विश्वसनीय संस्था से लेने का पर्पज ये होता है कि उसमें जो वाइल्ड टाइप का जो फूल गेंदे का आता है वो नहीं आएंगे और इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती। और किसान भाई से भी कहूंगा कि ये एक ऐसी फसल है कि ये ट्रैप क्रॉप के रूप में भी आप सब्जियों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गेंदे की फसल से एक तो फूल की उत्पादन होगा ही होगा, साथ ही जैसे हम बात करते हैं गोभी की बात करते हैं, पत्ता गोभी की बात करते हैं, ब्रोकली की बात करते हैं, तो आप 5 लाइन ब्रोकली लगाते हैं, 5 लाइन फूल गोभी लगाते हैं, 2 लाइन गेंदे की भी लगाइए और चारों तरफ से जो बाउंड्री है उस पे 2-2 लाइन गेंदे की लगा देंगे तो एक तो बाहर से कीट नहीं आएंगे, साथ ही साथ इसमें एक केमिकल एल्थ्रिन छोड़ती है जो कि निमेटोड से भी राहत देती है। एक तो फायदा होगा कि हम उसके फूल बेच के पैसा कमा लेंगे, साथ ही हमें जो जमीन में निमेटोड की एक समस्या आती है उसे भी कंट्रोल कर रहे हैं, और आपका बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व जो हम रसायन स्प्रे करते रहते हैं सब्जियों में वो ट्रैप कर लेगा, कीड़ों को बाहर आने नहीं देगा, जिससे कि आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से सब्जी और फूलों की बात करी, क्योंकि ये बरसात का जो मौसम होता है इस मौसम में बहुत से हमारे बागवान भाई फल वाले पौधे लगाते हैं, कुछ अपने सजावटी पौधे भी लगाए जाते हैं, तो ये पौध रोपण का भी एक महीना माना जाता है, इस समय क्या कुछ कर सकते हैं?
0: जी, इस समय जिन किसान भाइयों ने जैसे पौध रोपण वैज्ञानिक तरीका है कि गर्मी के मौसम में हम मई के मौसम में गड्ढे खोद के छोड़े हुए हो, जिस गड्ढा खुदाई करने का पर्पज ये होता है सॉयल का जो गड्ढे की है सोलराइजेशन द्वारा ट्रीटमेंट हो जाता है जिसमें हानिकारक फंगस कीट बीमारी वगैरह उसमें नहीं आते, उससे फायदा हो जाता है। दूसरा क्या होगा, अब जो बारिश के मौसम में गड्ढे भरने का टाइम होता है तो उसमें विशेष ध्यान दें कि जो गड्ढे से आपने मिट्टी निकाला उसको वापस नहीं डालने। सबसे पहले तो जहाँ पे भी आपने बगीचे लगाने हैं वहाँ की मिट्टी और पानी की आप जांच जरूर करावें, जिससे कि ये पता चल जाए कि हम उस जगह पे कौन सी फल वाले वृक्ष लगा सकते हैं। दूसरी चीज, गड्ढे में जो हम मिट्टी निकालते हैं बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि मिट्टी को वापस वही डाल देते हैं खाद मिला के, लेकिन हमने वो नहीं करना क्योंकि हमारा मिट्टी जो है 5 से 6 इंच का ही उपजाऊ है, तो जो हमने गड्ढे से मिट्टी निकालना वहीं पे आप फैला दें, और 5-6 इंच की मिट्टी पे आपने जितनी मिट्टी है उतनी ही बराबर मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद और आप जिप्सम और नीम की खली का जरूर इस्तेमाल करके और मिक्स करके अच्छी तरह से आप गड्ढे को भर दीजिए। अगर बारिश हो रही है तो उससे मिट्टी बैठ जाएगी, अगर नहीं हो रही तो आप थोड़ा पानी डाल के मिट्टी को बैठाना जरूरी होता है, क्योंकि हम पौधे जब लगाते हैं अगर थोड़ा सा भी उसमें एरेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पौधे की सूखने की या जाने की संभावना रहती है, तो एक तो पानी लगाएंगे तो मिट्टी बैठ जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, फल वृक्ष जो होते हैं, हम अन्य फसल की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने में उसकी क्रॉप साइकिल होती है, लेकिन अगर हम फल की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, जैसे हम घर बनाते हैं कि 100 साल तक चलता है, वैसे ही हमारा पौधे भी जो 25 से 30 साल का लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो उस अवस्था में हमें ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे वैरायटी की हम बात करते हैं ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बाजार से किसान भाई लाते हैं और कलम वाले पौधे बता के लाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि 2-3 चीज़ें हैं, एक तो वैरायटी बेचने वाले को नहीं पता होता है, तो हमें वैरायटी का, क्योंकि वैरायटी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा किए कि खेतों का साइज जो है छोटा है, और पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े देसी पौधे लगाए जाते थे जिसकी संख्या करीब बहुत कम होती थी। हम एक एकड़ में लगभग 60 से 62 पौधे लगा लेते हैं, लेकिन अब ऐसी तकनीकी आ गई है वैरायटी के साथ एक एकड़ में किसान भाई 1500 तक पौधे लगा सकते हैं दूरी कम करके, क्योंकि उसका फैलाव कम होता है और हाइट कम होता है। तो ऐसी चीजों का हमने ध्यान देना है, और विशेषज्ञों के आप संपर्क में रहिए।

0: इससे क्या होगा कि आपको इन चीजों की जानकारी मिलती रहेगी समय समय पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने एक तो प्रमाणित स्रोत रखना है, वैरायटी का जरूर ख्याल रखना है, और लगाते समय विशेष ध्यान देना है कि जो आप कहीं संस्थान से लाते हैं, तो आपने देखा होगा काले जो प्लास्टिक के पन्नी में उसके पिंड होते हैं, उस पिंड को बहुत सावधानी से उसकी तेज धारदार कोई भी ब्लेड से या चाकू से उसको हटा के, और बहुत अच्छे बच्चों की तरह जैसे हम पालते हैं बहुत मासूमियत से रखते हैं, कि उसका पिंड जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर पिंड ब्रेक होता है तो पौधे सूखने की 100% संभावना रहती है। तो आप उसका विशेष ध्यान दे रहे हैं कि लगाते समय पिंड ना टूटे, सावधानी से हटा के, और जितनी पिंड की साइज है उतने ही आप जो गड्ढे में है उसके सेंटर में उसकी मिट्टी निकाले और पौधे को रोपित कर दे। और विशेष ध्यान देना, ज्यादातर देखा जाता है किसान भाई के दिमाग में ये होता है कि जहाँ पौधे लगाया है वो एरिया गड्ढा रहे, उसे गड्ढा नहीं रखना है, उसको जमीन के सतह के बराबर पौधे लगाने के बाद मिट्टी और खाद मिक्स जो अपने मटेरियल है उसको भर के बराबर रखना है, मिट्टी के सतह पर मेड़ बनाइए। नहीं तो क्या होता है कि पानी हम डालते रहते हैं गड्ढे में और तने के संपर्क में हमेशा पानी रहता है, और तने के संपर्क में रहेगा तो रूट रोटिंग की और तना जो गलन की बीमारी आएगी और पौधा वो चला जाता है। किसान भाई इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि बोलते हैं हम तो पानी और खाद समय से डालते हैं फिर भी पौधा सूख गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हमारी कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से पौधे सूखते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि लगाने के बाद जो मिट्टी के सतह के बराबर आपको पौधे का जड़ क्षेत्र भी रखना, थोड़ा सा ऊंचा ही रखिए जिससे कि तने के पास पानी न पहुंचे, और चारों तरफ से आप डोल बना के और उस डोल के अंदर में ही पानी देंगे, पौधे का विकास अच्छा होगा। और समय समय पे जो है कीट और बीमारियों और खादों का व्यवस्था करते रहे और पानी लगाते रहे। साथ ही साथ आप ये भी कोशिश करें कि पानी के लिए आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे पौधा कम से कम पानी और पानी की बचत भी हो जाएगी, तो आपको अच्छा फल का भी आप खेती कर सकते हैं और आप मुनाफा कमा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप अगर अपनी फसल जो भी लगाते हैं उसमें उन्नत किस्म लें और समय का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर उसकी निगरानी अवश्य करते रहें। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भाई आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी, और विषय था इस माह की ये जाने वाली बागवानी कार्य, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि किसान विज्ञान केंद्र
3: उजवा। देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने, बागवानी की तो बात की, साथ साथ सब्जियों के और फूलों के बारे में भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसमें ध्यान रखने योग्य जो उन्होंने बातें बताई कि एक तो सही वेराइटी का आप चयन कीजिए, और जो भी आप वृक्षारोपण कर रहे हैं मेड़ बना के करें ताकि उनकी जड़ों में अधिक पानी ना जाए, और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग की भी बात की, और अगेती खेती करके आप कैसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये तो थी जानकारी। और अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना, जो कि हमारे किसान भाई, अधिकतर किसान भाई इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उससे जुड़े हुए भी हैं, जिसमें कि प्रति वर्ष 6,000 रुपये सहायक राशि मिलती है, जो कि 2,000 की किश्तों में 4 महीने के गैप पर आती है। और अगर तो अभी बात करें 23वीं किश्त जो है जून के महीने में हमारे किसान भाइयों को जारी कर चुके हैं, और 24वीं किश्त का इंतज़ार किसान भाइयों को है। इसमें मुख्य जो ध्यान रखने वाली बात है कि योजना का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आपका EKYC और आधार लिंक हो, तो आधार लिंक ज़रूर करवाएं।
2: और ये भी है कि ज़मीन का जो हक है किस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं, किसान के नाम पर खेती योग्य ज़मीन होना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी और जानकारी और किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं या पोर्टल पे जाकर आपको सब कुछ पता लग जाता है, और आप वहीं पर ही रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं ऑनलाइन, और क्या आपको पत्राचार साथ में इसके साथ जोड़ने हैं।
3: और अब कार्यक्रम में करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं मस्त राम यादव से ये कृष्ण भजन।

0: तो भाई आप सुन रहे थे मस्त राम यादव की आवाज़ में ये कृष्ण भजन।
1: और भाई याद दिला दें कि कल है शनिवार और शनिवार को हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जो कि फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप हमें अपने पसंद के कलाकार और अपने पसंद के गीतों के बारे में बताते हैं, हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ते हैं और हम आपकी पसंदों को अधिक से अधिक कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

गजल के इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई एक खूबसूरत गजल। आइए अब सुनते हैं आवाज़ जगजीत।

0: जगजीत सिंह की इस खूबसूरत गज़ल के साथ इस प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। भारत दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा, जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 का और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने GSLV-F17 के माध्यम से EOS-05 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गौरव का पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू समकालिक कक्षा से भारत के पहले चित्रण उपग्रह का प्रक्षेपण देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक और ऐतिहासिक छलांग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो और भारतीय उद्योग मिलकर भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि परिषद द्वारा सम्मेलन स्थल, VIP और प्रमुख मार्गों, बाजारों तथा ब्रिक्स प्रतिनिधियों के ठहरने वाले क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता, हरित सौंदर्यीकरण, रखरखाव, ब्रांडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है।
3: सम्मेलन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 17 प्रमुख गोल चक्करों, 11 होटल परिसरों और 10 NDMC भवनों पर सजावटी रोशनी की जाएगी। NDMC ने बताया कि सभी कार्य आगामी बुधवार तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं 15 स्थानों पर पुष्प सज्जित बोर्ड, 9 स्थानों पर फूलों के फव्वारे और 15,000 से अधिक गमलों से हरित सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए डिजाइन के अनुसार 309 स्थानों पर सम्मेलन की ब्रांडिंग पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने तथा धूल और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 5 प्रमुख स्थानों पर विशेष मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों पर विशेष स्वच्छता, गहन धुलाई, यांत्रिक सफाई और जलभराव से निपटने की 100% तैयारी कर ली गई है। श्री चहल ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, नेतृत्व क्षमता और विश्व के प्रमुख देशों के साथ मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अकबर रोड, मथुरा रोड, लोदी रोड, अशोक रोड, रिंग रोड सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवा का उपयोग करने और वाहन चालक

0: जगहों से निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करने तथा मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सभी लोगों और उनके परिवारों पर सदैव बना रहे। वहीं श्रीमती गुप्ता ने कहा कि मुरलीधर श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, कर्तव्य और धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस सिखाता है। दिल्ली सहित अक्षरधाम मंदिर परिसर में आज बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को श्रद्धा, भक्तिभाव और हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत, प्रार्थना, संतों के प्रेरक उद्बोधन और बाल तथा किशोरों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गईं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज गांधीनगर, कृष्णानगर, ईस्ट आजाद नगर, झील खुरंजा, गीता कॉलोनी और रामनगर सतनाम पार्क सहित कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें धार्मिक कार्यक्रम, रासलीला और मटकी फोड़ जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण इन क्षेत्रों में यातायात धीमा रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज मटकी फोड़ लीग सीजन 2 का आयोजन किया गया।
2: दिल्ली में आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंदिरों तथा प्रमुख स्थानों को भव्य आयोजन के लिए सजाया गया है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस प्राचीन परंपरा को आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं बिरला मंदिर, पूर्वी कैलाश और पंजाबी बाग स्थित इस्कॉन मंदिर तथा द्वारका स्थित इस्कॉन द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। दिन भर और देर रात तक भजन कीर्तन तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों जैसे गोकुल तथा वृंदावन में उनके बाल जीवन को दर्शाती झांकियां सजाई गई हैं। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर, रामलीला मैदान और रोहिणी के जापानी पार्क सहित कई जगहों पर यातायात प्रभावित रहेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है तथा कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। प्रख्यात उद्योगपति सर श्रीराम द्वारा 1926 में स्थापित इस महाविद्यालय ने एक से बढ़कर एक विद्वान, पेशेवर, प्रशासक

0: उद्यमी, नीति निर्माता और राष्ट्र निर्माता दिए हैं। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के दिन मनाया जा रहा है, जिससे ये अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्र कल समाज की नींव मजबूत करने में शिक्षकों और शिक्षाविदों के सहयोग को सम्मानित कर रहा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के सभी 39 उपमंडलों में पहली बार विशेष प्रक्रिया से उपपंजीयकों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों की नियुक्ति सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव की उपस्थिति में पूरी की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस पर राष्ट्र सेवा में समर्पित सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू समाज में आत्मबोध, एकात्मकता और स्वाभिमान का भाव जागृत करना, सनातन संस्कृति की जीवन परंपराओं को सशक्त करना तथा सेवा को राष्ट्र कार्य का माध्यम बनाना परिषद की मूल प्रेरणा है। राजधानी में आज सुबह के समय हल्की धूप रही, वहीं दोपहर बाद राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल आमतौर पर बादल छाए रहने के और गरज तथा चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा, जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत। तो तलत का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र की एक बहुत ही बेहतरीन भजन के साथ। आज है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव, जिसे पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व धूमधाम से मना रहा है। आकाशवाणी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जी, जब स्थिति विकट हो जाती है तब बना स्थिति यही कहती है कि आप अपने इष्ट को पुकारें, और जब ऐसा कोई खास दिन हो तब बहुत दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से अपने इष्ट को याद किया जाता है।
1: सुनो।

जी कृष्ण कन्हैया आंखों का है वो तारा। और अब सुनते हैं हम अगला गीत। हमारा उम्मीद है कि आप कार्यक्रम पसंद कर रहे होंगे और गीत आपको अच्छे लग रहे होंगे।

अब किसी की मोहब्बत से कोई अगर जले तो फिर क्या करें, लेकिन हाँ मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि किसी से भी किसी को हो सकती है, और जब बात हो कृष्ण जी की तो फिर मोहब्बत की जो सीमा है ना वो पार हो जाती है।

0: पलके झुकें और प्रणाम हो जाए, पलके झुकें और प्रणाम हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कान्हा, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कान्हा, कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए।
1: प्राण प्राण प्राण था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झना नन झना नन झना नन नन नन प्राण प्राण प्राण था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झना नन झना नन झना नन नन नन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया।

लहराय रही, सिगदत सिगदत सिगदत सिगदत सिगदत शर्माय रही, सिगदत सिगदत सागर सिंधा मुस्काय रही, पलकाय रही, तिन तिन तिन तिन तिन तिन तिन तिन इधर बंसी में लहर सी उठी, कृष्ण के मुख पर सजने लगी।

ने पुकारा हाय दई कोई आओ सखी कोई आओ सखी, फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला, फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मोरी, कहा कृष्ण ने सुपर है वरना।

इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कला की

अब रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया,

और बहुत ही खूबसूरत, मुझे मतलब सबसे प्यारा ये लगता है, कितना खूबसूरत ये फिल्माया गया है और कितना प्यारा ये लिखा गया है। और एक ये जो है फिल्म वीर से, ये भी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा गीत।

और अब वक्त हो चला है कि आपसे विदा लें, और जन्माष्टमी के तौर पर और इस मौके पर अगर हम बांसुरी ना सुने तो फिर कुछ अधूरा सा रह जाता है। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ मैं यहीं इस बांसुरी धुन के साथ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज़ आप सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों

0: को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, Possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
6: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
7: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे.
6: And recovery efforts in the country.

0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत

0: के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries, including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
4: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology, and sustainable development, while facilitating an exchange

0: fell 0.2%, while the Nifty Small Cap 100 index gained 0.2%. In the forex market today, the rupee remained unchanged at 94.49 rupees against the US dollar. With Intikhab's report, Nishit Kumar for Akashwani News.
1: President Draupadi Murmu has greeted teachers across the country on the eve of Teachers' Day. In a message, the president said that Teachers' Day was observed to mark the birth anniversary of former president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great author and philosopher. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from the geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Astrup and Anders Skarup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in Shenzhen this evening. Earlier, the Indian pair defeated Francis Thomas Junior Popov and Christoph Popov 21-17, 22-24, 21-9 last night to make it to the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का तीन रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, ताहम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का तीन रोज़ा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, मुत्तहदा अरब इमारात, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज़्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ दो तरफा मीटिंगें कीं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: फोरम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अदालती तआवुन को मजबूत बनाने, अदालतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और تیز رفتار عدالتی عمل کے ذریعے عوام کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے اور مختلف ممالک

के बेहतरीन कानूनी तरीकों पर बातचीत की गई। तीन रोज़ा इस फोरम ने मुख्तलिफ ममालिक की अदलिया को इंसाफ की फराहमी, बैन अलाक़वामी तनाज़ात के हल, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम किया। इसके अलावा इस फोरम के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के अदलिया के सरबराहान ने अपने अपने ख्यालात और तजुर्बात का भी एक दूसरे से इश्तराक किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबर।

0: अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोपी इकतसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का यह रद्द अमल वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह कामयाबी इतालवी अवाम के उनकी क़्यादत पर एतमाद और भरोसे को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मेलोनी की दोस्ती ने भारत और इटली के दरमियान खसूसी स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के अवाम की खातिर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए करीबी तआवुन जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की और आने वाले बरसों में मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की मुसलसल कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं।
1: 275 भारतीय नागरिक लापता हैं। इसमें 275 में 49 वो लोग हैं जो चीन में भी उनके लिस्ट पे मिसिंग है, जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर 275 है उसमें, लेकिन 49 लोग हैं जो चीन की तरफ भी इसी में है।
0: उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी रबते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुकाम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि वजारत खारजा बचाए गए भारतीय शहरियों के नाम लगातार जारी कर रही है। जनाब जायसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जायसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासरा नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ज़रूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा के बयान पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली सभी के लिए चैलेंज है और इस बारे में कार्रवाई मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुतल्लिका सलाहियतों के नज़रिए पर मबनी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के यूक्रेन दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हम मनसब आंद्रेई सिबिहा और सदर विलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने लगातार भारत के इस मौक़िफ को दोहराया कि यह जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें चितवन में हुई हैं, जहां 359 अफराद की मौत हो गई है, जबकि मशरकी नवलपरासी जिले में 218 अमवात हुई हैं। इस दौरान मजीद 2 अफराद की मौत काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। भारत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी और बचाव कार्रवाइयों में मदद के लिए नेपाल को मजीद 2 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजा है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों C-130 तैयारे मजमूई तौर पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर काठमांडू पहुंच गए हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल तश्वीशनाक बनी हुई है। तमाम बड़ी नदियां जिसमें गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी में तुगयानी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और मगरबी चंपारण समेत शुमाली वस्ती और जुनूबी बिहार के 16 जिले सैलाब की जद में हैं। साहिली और नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल होने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुतासिरा इलाकों में कुदरती आफात से निपटने की अथॉरिटी की जानिब से जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमें तैनात की गई हैं। मुतासिरा खानदानों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि महकमे सेहत की टीमें मुतासिरा इलाकों में सरगर्म हैं। इस दौरान वजीर आला सम्राट चौधरी और नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, जो कि आबी वसायल के भी वजीर हैं, ने आज सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। वजीर आला ने पटना में हुक्काम के साथ एक आला सतह की जायजा मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सैलाब से बचाव के तरीके के साथ साथ राहत और इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी गई। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: उत्तर प्रदेश के कई जिले सैलाब का एताब झेल रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी समेत रियासत के 26 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सैलाब से मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी के सैलाब से मुतासिर होने के बावजूद राहत और बचाव निजाम के सरगर्म अमल होने की बदौलत सभी मुतासर अफराद में राहती किट्स और खुराक के पैकेट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा अफराद को सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मकाम समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई मकाम पर कल शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयाँ और खाने पीने की दूसरी चीज़ें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल और गणपति आर मंदिर से लाल चौक तक जुलूस निकाला। मर्दों, खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अकीदतमंदों ने मजहबी नारे लगाते हुए और भजन गाते हुए तकरीबात में शिरकत की। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बार डिवेयर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ बहरी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे से वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफ्द को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो आज भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के वजीर आजम बार डिवेयर से मुलाकात की और शहरी हवाबाजी के शोबे में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रास्त फिजाई कनेक्टिविटी, आला कदर वाले फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए फजाई कार्गो और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जैसे शोबों में इश्तराक पर भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F-17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक गिरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर इस्तेमा से भी खिताब करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क के आला तालीमी इदारों में एक मुमताज़ नाम है और कॉमर्स, माशियात और मैनेजमेंट के शोबों में तालीम और तहकीक का अहम मरकज़ है। अर्ज़ियाती साइंसेस के मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत तलबा पर मरकूज़ प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने, उनमें बुनियादी साइंसी सोच पैदा करने और नौजवान जहनों को अर्थ सिस्टम साइंसेस मुताला कराने की तरगीब देने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रियासतों को अदालती अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल को अपने मुतालिका सर्विस कवानीन में तरमीम करके रिटायरमेंट की उम्र बाज़ाबता तौर पर 62 साल करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने यह भी वाजे किया है कि 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले अदालती अफसरान को 62 साल तक खिदमात जारी रखने की इजाज़त देने से पहले मुतालिका हाईकोर्ट की जानिब से उनकी कारकर्दगी और मजूनीत का जायज़ा लिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के जियारत और सराब ज़िलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेज पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी अहलकार मारे गए और दीगर कई जख्मी हुए। BLA के दावे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब पूरे बलूचिस्तान में मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से हमलों में फिलहाल इजाफा हो गया है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में मुल्क गिर कार्रवाई की और ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 3 अफराद को हिरासत में लिया। मुल्क में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मुसलसल

به دشت بی کسی.

فأس

أرضنا بعيد.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरी कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कामकाज के नियमों को अंतिम रूप देने, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने और जनकल्याण व विकास से जुड़े अन्य मामलों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी जानकारी दी, जो 7 सितंबर से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन तथा गुजरात के द्वारका में मुख्य आयोजन हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों को भी इस अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करते हुए महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए में पाकिस्तान से भिड़ेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के अपने पहले 2 मैचों में था

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 1:10 और पूरे हो गए 10 सेकंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत सुनहरे का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: गीत बहार कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स

0: के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास के में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ब्रिक्स देशों के प्रमुख मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्यों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विजय मेहरा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन के साथ कल पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के लिए डच नेशनल इंस्टीट्यूट का दौरा किया। जुलाई में जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी के वी एल कांता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जल प्रबंधन में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नीदरलैंड का दौरा किया था और गुजरात में कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर तकनीकी बातचीत की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वियतनाम के दा नांग में चल रहे पिकबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन भारतीय टीम ने लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टीम का रिकॉर्ड अब तक अजय रहा है। हर्ष मेहता, अर्जुन सिंह, अनिश फ्रोइलन, अमन पटेल, पर्ल अमल साधीवाला, नाओमी अमल साधीवाला, आली इब्राहिम और मिहिका यादव वाली भारतीय टीम ने पहले राउंड ऑफ 13 के मैच में चीन को 4-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The 3-day Brexit Chief Justice's Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief

0: वो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना? सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: संपन्न होता है। 3 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के विषयों के पेपर में गलतियां की शिकायत के बाद दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वी राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The three-day BRICS Chief Justices Foreigners begin in New Delhi. The Foreigners brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and Senior Judicial Leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India Justice Suryakant held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening of judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations at Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honors the contribution of teachers and educators in shaping generations and strengthening the foundations of society. President Draupadi Murmu will today confer National Teachers' Awards on 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The 48 selected school teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government. The president will also present national awards to teachers on 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. The External Affairs Ministry said 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighboring country. Briefing the media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals are still missing. He added that 1,907 Indian nationals have safely crossed into Nepal from China. Mr. Jaiswal said India will continue to provide assistance based on the requirements of the government of Nepal.
3: In the wake of this tragedy, we have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal. As a close friend and partner, India responded promptly, and we will continue to support rescue, relief, reconstruction and recovery efforts in the country.
2: Meanwhile, the death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,287, with around 5,083 people reported missing. The festival of Janmashtami, marking the birth of Lord Krishna, was observed across the country with religious fervour. Devotees observed fast, performed special prayers and ceremonies and visited temples. Devotional songs and chanting continued throughout the day and into the night. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings to the people on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite, from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. ISRO launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh yesterday. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of related services. Minister of State for External Affairs, Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, will be on a four-day visit to Riyadh, Saudi Arabia from today. Ministry of External Affairs said the visit will provide an opportunity for both the sides to discuss issues of mutual interest in the areas of human resources, skill development, environment, climate change and international affairs and further strengthen the multifaceted strategic partnership between India and Saudi Arabia. The National Testing Agency, NTA, has released admit cards for the UGC NET June 2026 retest in English, Commerce and Sociology. The exams will be held on September 9th and 10th. Candidates can download their admit cards from ugcnet.ta.nic.in using their login credentials. In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the Women's Asia Cup 2026 at Dubai International Stadium today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time.
4: In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered their fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark in Shenzhen.

0: last evening. And that is the end of this news bulletin.
1: AIR Live News 24/7 चैनल पर आइए सुनते हैं प्रोग्राम गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर आधारित ये प्रोग्राम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तालावाद्य कचेरी। येल्ला वेंकटेश्वरा कलाकार है, राग है तालामादी।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आपने सुना ताला वाद्य कचेरी और येल्ला वेंकटेश्वरा को, राग आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग, तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास परीक्षा। इसके बाद 5:20 पर प्रसारित करेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम स्व

0: रंजनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। 6 बजे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिए। 6:40 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे चिंतन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों पर। 6:45 पर रामचरित मानस का समय रहेगा, इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड। 6:55 पर संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा और 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीति का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लक्ष्मी मधुसूदन के गाए कुछ भजन। गीतों भरे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। 8 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुनिए इंग्लिश न्यूज़। 8:30 पर उर्दू समाचार सुनेंगे। 8:45 पर सुनिए स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम हमारी सेहत। 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा धरती आकाश। 9:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता अध्यापक राष्ट्र के निर्माता। 10 बजे का समय हिंदी समाचार का और 10:05 पर आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज़। 10:10 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10। इसके बाद आपके लिए प्रसारित करेंगे 11:25 पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट। विज्ञान भवन से महिला कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा 12:10 और 1:05 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे इंग्लिश न्यूज़। 1:10 पर कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है अब्दुल्ला।
1: 8 में नवीन सक्सेना। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनके चरित्र का निर्माण करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक्स के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा वो वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र

0: और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर हैं। वो कल गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ गोवा से संबंधित मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बाद में वो मादक पदार्थों पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह शाम को अटल भवन में नव निर्मित भाजपा राज्य कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। वो पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सोमवार को गृहमंत्री पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और गोवा पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान में शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज भारत का मुकाबला होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

印度德里广播电台，从印度时间5:15到6:45，还是6:17:30，向亚洲播送普通话节目。收听广播频率为15280千赫，完全广播频率为幺